0: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: Hello and a very warm good morning to all our listeners of Akashvani as we bring to you the live updates of the ongoing Asian Games 2026. मेरा नाम है साक्षी मांडवाल दोस्तों, और आज के दिन की शुरुआत में बहुत सारे इवेंट्स हमने देखे हैं और देखने को भी हमें मिले। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कबड्डी में भारतीय टीम का जो प्रदर्शन अभी तक रहा है वो बहुत ही डोमिनेटिंग रहा आज इन द मेन्स ग्रुप ए, जहां पर हमने साउथ कोरिया को 63-31 से हरा कर एक बहुत कन्विंसिंग जीत के साथ आज के दिन की शुरुआत करी। उम्मीद भी भारतीय कबड्डी के खिलाड़ियों से यही रहती है कि हमारा, क्योंकि इस खेल के अंदर हमेशा ही दबदबा बना रहा है, हम इसी तरह से जीत हासिल करें। मूविंग ऑन टू सॉफ्ट टेनिस, जैमीना रजिस्टर्ड अ क्लीन 4-0 स्वीप अगेंस्ट पाकिस्तान हुसैन अरायन एंड मेन सिंगल्स ग्रुप डी, वाइल आद्या तिवारी फेल 1-4 टू थाईलैंड अलीशा जिलगर इन वुमेन सिंगल्स ग्रुप डी। पेंसिंग की भी अगर हम बात करें तो सचिन और हिमांश सिंह दोनों, सचिन हमारी तरफ से थे पूल 5 के अंदर और हिमांश सिंह रहे पूल 1 के अंदर। उन्होंने चौथे स्थान पर अपने अपने पूल के अंदर मेंस इंडिविजुअल फॉयल में फिनिश किया। वहीं अगर कराटे की बात करें तो चेतन भट्ट सपोर्ट हार्ट ब्रेक इन द मेंस 84 kg कुमिती सेमीफाइनल, नैरोली मिसिंग आउट ऑन अ स्पॉट इन द फाइनल वाया द सेंचुरी रूल। अब स्विमिंग की ओर बढ़ते हैं। आर्यन नेहरा टच द वॉल 4th एंड फाइनल बी ऑफ द मेंस 1500 मीटर फ्रीस्टाइल। वुशु में हमारी तरफ से देवी हंजाबाम फिनिश 9th इन द वुमेन्स नान क्वान फाइनल। एंड मूविंग ऑन, यहां से भी आगे आएंगे सेपक तरो की तरफ, जहां इंडिया की कैंपेन सफर्ड अनदर सेटबैक फॉलिंग 0-2 मलेशिया इन मेंस टीम रेगू ग्रुप बी। एंड नाउ द ब्राइटर न्यूज ऑफ द डे। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं। बॉक्सिंग के अंदर साक्षी चौधरी हैज एंटर इन टू द राउंड ऑफ 16। जी हाँ, शी डिलीवर्ड अ टैक्टिकल मास्टर क्लास इन द फाइनल राउंड, मैनेजिंग द रिंग स्मार्टली टू सील अ यूनानिमस 5-0 विक्ट्री ओवर पेरिस ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आयरा विलेगस, कंट्रोलिंग द पेस, landing precise shots and thwarting Villegas' attempts to bridge the gap, the Indian pugilist cruised through to the round of 16. Well, अब साक्षी के लिए यहां से आगे का सफर दिखाता है कि she'll be up for a pre-quarter final clash against Kazakhstan's reigning world champion Alua Balkibekova. इसके बाद एक नजर बैडमिंटन की ओर भी आज डाल लेते हैं। बैडमिंटन में कहूंगी मैं कि पीवी सिंधु का के साथ आज बैडमिंटन की जो शुरुआत हुई, वहां पर हमने देखा कि कैसे पीवी सिंधु वाज अप अगेंस्ट जापानीज अकाने यामागुची। शुरुआत के मैचेस में या गेम्स में कहेंगे, पहला जो गेम था जहां पर पीवी सिंधु ने उस गेम को अपने नाम किया 23-22 से, वेरी नैरली बट अ वेरी गुड गेम दैट वी गॉट टू विटनेस, शी वाज एबल टू विन। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे गेम के अंदर, पीवी सिंधु got beaten by

0: जापानीज 21-18 से, और तीसरा गेम फिर से क्विक सक्सेशन में पीवी सिंधु हार गई अपनी जापानीज ओपोनेंट से 21-11 से. As a result, that did not go in India's favor. उसके बाद आई उन्नति हुड्डा, जिन्होंने गेम नंबर टू में, मैं कहूंगी उन्नति हुड्डा की तरफ से भी परफॉर्मेंस बैडमिंटन में निराशाजनक ही आज रहा, क्योंकि जो इसमें भी हमने देखा वहां पर भी she was initially trying to win the game but then went on to lose the game ultimately. Disappointing from Unnati Hooda as Tomoka Miyazaki from Japan made an exemplary comeback to take the second game away from her 21-18. पहला गेम तो वो हार ही चुकी थी 16-21 से, और दूसरा गेम दोबारा से वो हार गई, जिसकी वजह से यहाँ पर भी वुमेन्स टीम का जो क्वार्टर फाइनल में कंटेंशन हम चाह रहे थे, क्योंकि ये पूरा एक टीम गेम है, वो हमारे लिए बहुत हमारे फेवर में नहीं गया. एंड थर्ड मैं बात करूंगी यहाँ पर कि उम्मीदें अभी बनी हुई हैं गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली से, लेकिन उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो ओपनिंग मैच जरूर हमने जीत लिया है अगेंस्ट युकी फुकुशिमा और मायू मत्सुमोतो. दिस इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली, लेकिन अगर इनको हमारे सेमीफाइनल के होप्स को लाइव रखना है तो बहुत जरूरी है कि ये गेम भी ये जीते. So far, it's not been too bright a news overall from the world of badminton, and shooting once again turned out to be the biggest disappointment, should I say, of the day today, because bahut ummeedein thi 10 meter air rifle mixed team finals ke andar, lekin rifle shooting ke andar hamara jo raha, India finished fourth and hence missed out on a medal. Well, Elevenil, Valarivan aur Parth Mane were shattered by the result as they finished fourth with 376.3 points. So far, the best news I can say has come only from the world of boxing. Lekin din abhi bahut lamba hai, cricket bhi aane wala hai, jahan pe Bharat ka medal contention rahega. We'll keep bringing these updates to you every hour. For now, it's a goodbye.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
2: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे.
3: आप सुन रहे हैं
4: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரம். டெல்லி அஞ்சல்.
5: எஃப்எம் ரெயின்போ 102.8 இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
6: புதுச்சேரி மக்களின் கவனத்திற்கு, இனி மின் கட்டணத்தை பற்றிய கவலை வேண்டாம். பிரதம மந்திரி சூரிய இலவச மின்சார திட்டத்தின் மூலம் உங்கள் வீட்டில் சோலார் மின் நிலையம் அமைக்க மத்திய அரசு சார்பில் ரூபாய் 78,000 திட்ட மானியமும், புதுச்சேரி அரசின் கூடுதல் மானியமாக 30,000 ரூபாய் என 3 கிலோவாட்டிற்கு ரூபாய் 108,000 வரை மானியம் கிடைக்கிறது.
7: மானியம் பெற பதிவு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலம் மின் உற்பத்தி நிலையம் அமைக்க வேண்டும்.
6: கூடுதல் விவரங்களுக்கு www.pmsuryagar.gov.in.
4: 9:36:35 எஃப்எம் ரெயின்போவின் இணைய வழி நேயர் விருப்பம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததா காதல் கோட்டை திரைப்படத்திலிருந்து பாட்டு வந்துகிட்டே இருக்கு. இந்த பாடல விருப்ப பாடலா கேட்டிருக்காங்க கடலூர்ல இருந்து ஜெயராஜ், ஜெயந்தி மற்றும் ஜெயபிரபா.

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स के साथ। मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त है अभिनव कुंशी और हम लेकर आ गए दोस्तों आपके लिए सुबह 11:30 बजे का अपडेट। सबसे पहली जो न्यूज़ मैं आपको देने वाली हूँ वो है बैडमिंटन की दुनिया से। कोई अच्छी खबर तो लेकर नहीं आ रही हूँ लेकिन निराशाजनक खबर ही आपको दूंगी कि भारत का बैडमिंटन के अंदर का जो सफर है वो आज आकर समाप्त हो गया। जी हाँ, हम जापान से 3-1 से हार गए और इसके साथ ही साथ क्वार्टर फाइनल्स के आगे हम प्रवेश भी नहीं कर पाए। भारत की तरफ से पीवी सिंधु का जो पहला मुकाबला था उनकी जापानीज ओपोनेंट अकाने यामागुची से वो 23-11, 18-11, 11-21 से हारी। उन्नति हुडा लॉस्ट तोमोका मियाजाकी आल्सो 16-21, 18-21 और फाइनली त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला भी उन्होंने भलाई हराया था यूकी फुकुशिमा और मायू मात्सुमोता को 21-17, 21-16 से। इकलौती जो हम कहेंगे जीत इसके अंदर भारतीय खिलाड़ी को मिली लेकिन वो जीत अपने आप में काफ़ी नहीं थी क्योंकि ये एक गेम था जो इन दोनों ने हमारे लिए जीता। और फाइनली तन्वी शर्मा हार गई नोजोमी ओकुहारा से 21-12, 21-10। यानी अंत में हमने देखा कि 2-3-1 से भारतीय टीम जापानियों से हार गई।
2: मगर देयर इज गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेबल टेनिस। जी हाँ, इंडिया ने जीत वहां पे पाई टेबल टेनिस के अरीना में से। इंडिया वन देयर मैच 3-2 एंड द स्टार फॉर इंडिया वाज यशवनी गोरपले हु वन टू मैचेस। याद दिलाएं इस मैच में इस टाइम इंडिया वाज डाउन 2-1 मगर 3-2 से जीत मिली और फिर श्रीजा अकुला थैंक्स टू हर इंडिया थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स। और नॉर्थ कोरिया से हमारा सामना होगा क्वार्टर फाइनल्स में 3:50 में। सो लुक आउट फॉर दैट। एंड नाउ सम न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्विमिंग।
1: यस अभिनव, एंड नाउ आई ब्रिंग इन द ब्राइट न्यूज फॉर ऑल आवर लिसनर्स बिकॉज अगर हम स्विमिंग की बात करते हैं तो भारतीय स्विमर्स की जो टीम है 4x400 meter मेडले रिले फाइनल के अंदर वो क्वालिफाई कर गए हैं। ये फाइनल होगा हमारा 2:55 भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ये टीम हमारी बनी है ऋषभ दास, दानुष सुरेश, बेनेडिक्शन रोहित और आकाश माणे की वजह से जिन्होंने कुल मिलाकर अपनी जगह आज इस फाइनल्स रिले फाइनल्स के अंदर दर्ज कर ली बिकॉज भारत ने समाप्त किया 7th स्पॉट पर फ्रॉम अ टोटल टीम ऑफ 16 टीम्स दैट वर प्रेजेंट इन द हीट्स।
2: एंड नाउ मूविंग ऑन टू क्रिकेट, ऑल द आईज आर ऑन आवर विमेन इन ब्लू जिनका आज चल रहा है गोल्ड मेडल मैच अगेंस्ट श्रीलंका। इट्स अ रिपीट ऑफ द एशिया कप फाइनल। बस इंडिया को रिपीट करना है जो उन्होंने करा था एशिया कप फाइनल में और जीत हासिल करनी है क्योंकि इंडिया वन द टॉस, दे वर इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट एंड एज वी आर टॉकिंग स्मृति मंदना हैज हिट अ सुपर बाउंड्री। सो best of luck to the Indian team.
1: Yes, indeed. And hopefully India finishes on a good note over there against Sri Lanka. Now to carry on the good news, soft tennis ki duniya mein aapko bata de ki Bharat ne Pakistan ko hara diya. Ji haan, Jai Meena took on Aryan Hussain in the men's singles group D clash jahan par unhone outplay kar diya Pakistan ke Aryan Hussain ko 4-2, 4-0, 4-2, 4-0 se. And as a result, we were able to secure that victory. Lekin soft tennis ki duniya mein ek khushkhabri jahan main aapko de rahi hu wahi pe aapko ek khabar aisi भी दूंगी जो थोड़ा सा सेटबैक रहा है हमारे भारतीय खिलाड़ी के लिए क्योंकि आद्या तिवारी सफर 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा जियलगर इन वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी।
2: And good news from the world of boxing is Sakshi Chaudhary, our Commonwealth Games gold medalist. उन्होंने हराया है Paris Olympics की bronze medalist Ira Villegas को in the women's 51 kg round of 32 और हराया भी है comprehensively. तीनों rounds मिले साक्षी को and she registered a 5-0 win.

0: Nate Scott.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ हैं इस वक्त दोस्तों अभिनव पुंछी. और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सबसे बड़ी खबर आज के दिन की, जो कि है भारतीय महिलाओं का क्रिकेट का मुकाबला. दे आर प्लेइंग द गेम अगेंस्ट श्रीलंका. इट्स द फाइनल मैच एंड वी डू होप इन दिस. Our hopes are resting on the Indian women cricketers that they'll be getting us the gold today. The first time in this Asian Games when the Indians can eye a gold medal and hope for that. भारतीय कप्तान हमारी तरफ से हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले आज बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. And that has proven to be very lucky for the Indians because they are off to a frolicking start. जहां 14.3 ओवर में भारतीय महिलाओं ने अभी तक 141 ऑन बोर्ड बना दिए एक विकेट गवाकर, जो कि गया शिपाली वर्मा का, जिन्होंने आज 48 रन बनाए 29 बॉल्स में. शी जस्ट मिस्ड आउट ऑन अ हाफ सेंचुरी बाय अ मियर टू रन्स ओवर देयर थैंक्स टू अ स्टुपेंडस कैच दैट वाज कॉट बाय काव्या काबंदी ऑन द बॉल ऑफ चामुदी प्रबोदा. Much needed wicket out there for the Sri Lankans because this partnership was getting very, very stable and sturdy between Shefali Verma and of course Smriti Mandana, but they were able to get a breakthrough on 99 runs. So a good start, Abhinav, for the Indians out there.
3: Yes, a brilliant start by our Indian women in blue, and hopefully they keep going great guns. And unfortunately, table tennis ke arena se itni achhi news nahi hai kyunki ek bahut tough encounter tha इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम का साउथ कोरिया के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल्स मैच में. हरमीत देसाई, मनुषा और मानव थक्कर तीनों अपना सिंगल्स मैच हार चुके हैं और उस हार के बाद, वो 3-0 जीत के बाद, साउथ कोरिया ने एडवांस करा है क्वार्टर फाइनल्स में. बट हमारे लिसनर्स डिसअपॉइंट मत हुई है क्योंकि हमारी इंडियन विमेंस टीम जो टेबल टेनिस की टीम है वो अपना मैच जीती थी प्री क्वार्टर फाइनल्स का थाईलैंड के खिलाफ 3-2 से. और आज हमारा क्वार्टर फाइनल है नॉर्थ कोरिया के खिलाफ at 3:50 PM.
2: जी, और जैसे हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं, अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि हरमनप्रीत कौर जस्ट मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी. जी हाँ, 73 रनों पर हरमनप्रीत कौर आज आउट हो गई है. 42 गेंदों में 73 रन उन्होंने आज बनाए भारत के लिए, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के मौजूद थे. एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 173.8, द विकेट कमिंग जस्ट एट द राइट टाइम. एंड वी नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स फेंसिंग, वेयर द इंडियन मेंस individual foil campaign has come to an end in the round of 32 with both fencers crashing out against the Kazakh opposition. Himansh Singh Sanasam also succumbed to a 9-15 defeat against Kalem Nurumov, while 17-year-old prospect Sachin met an identical fate, falling 9-15 to Timofey Semyonov. So, भारतीय मेन का individual foil category की fencing में भी आकर Asian Games 2026 में समापन हो गया है.
3: जी हाँ, एंड लेट्स टॉक अबाउट बैडमिंटन, जिसमें विमेन्स टीम का कैंपेन खत्म हुआ है. अनफॉर्चुनेटली इंडिया लॉस्ट ऑल दे 3 सिंगल्स मैचेस टुडे. पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा एंड तन्वी शाह ऑल लॉस्ट द सिंगल्स मैचेस. द ओनली ब्राइट स्पॉट वाज गायत्री गोपीचंद एंड ट्रिशा जॉली हु वन द डबल्स मैच. मगर निराश मत होइए क्योंकि हमारी मेन्स टीम क्वार्टर फाइनल में खेल रही है जापान के साथ. 11:30 बजे ये मैच शुरू होना था एंड द फर्स्ट पॉइंट इज जस्ट अबाउट टू बिगिन. सो होपफुली द इंडियन मेन्स टीम गेट्स अस सम गुड न्यूज फ्रॉम द बैडमिंटन कोर्ट्स.
2: जी, एंड अ स्लाइट करेक्शन टू बी मेड ओवर देयर कि स्मृति मंदना अभी भी क्रीज पर टिकी हुई है. जी हाँ, 73 रन उन्होंने बनाए हैं, 43 गेंदों में उनका विकेट नहीं गया है. हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की जो कप्तान है, उनका विकेट जा चुका है. 17 गेंदों में 19 रन का उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया. बट स्मृति मंदना, ऑल होप्स रेस्टिंग ऑन हर शोल्डर्स टुडे, क्योंकि शायद आज वो दिन भी हो सकता है जहाँ हम उनके बल्ले से 100 रन यानी सेंचुरी आते हुए देख ले. ही इज विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट. इंडिया गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. कमिंग बैक नाउ टुवर्ड्स द नेक्स्ट अपडेट दैट वी ब्रिंग टू यू, जो है कबड्डी की दुनिया से, जहां भारत ने आज साउथ कोरिया को 63-31 से हरा दिया इन द मेंस कैटेगरी. एंड दैट वाज अ वेरी कन्विंसिंग सॉलिड विन. अब भारत बांग्लादेश को कल फेस करेगा इन द ग्रुप स्टेज अगेंस्ट चाइनीज तेपाए, विच विल बी द नेक्स्ट गेम कमिंग अप टुमारो इन कबड्डी.
3: Of course, a great news there from Kabaddi, and also great news from boxing because Sakshi Chaudhary has beaten the Paris Olympics bronze medalist Era Villegas and has advanced to the

0: 2026 update.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड वेलकम एवरीवन, एशियन गेम्स 2026 के अपडेट लेके आए हैं। मैं अभिनव पुंछे, मेरे साथ है साक्षी मानवाल। और गुड न्यूज फ्रॉम द क्रिकेट फील्ड, इंडिया ने टारगेट दिया है श्रीलंका को गोल्ड मेडल मैच में 217 का। जी हां, इंडिया में 216 for 3। Top scoring was Smriti Mandhana with 79, Shefali Verma 48 and a stunning 22 ball 49 by Richa Ghosh. Sri Lanka jawab mein ek wicket already

0: अपना खो चुके हैं, इमेशी दुल्यानी आउट हो गए, मगर कैप्टन फैंटास्टिक चिमारी अट्टापट्टू इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। याद दिलाएं, ये वही हैं जिन्होंने 83 नॉट आउट मारे थे पाकिस्तान के खिलाफ, एंड दैट हैड मेड श्रीलंका चेज अ रिकॉर्ड टारगेट ओवर देयर। सो इट्स अ स्मॉल ग्राउंड, इट्स हाई स्कोरिंग, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम वी अपडेट यू देयर इज सम विकेट्स, एंड होपफुली शिफाली दिस द कैप्टन फॉल्स।
1: Well, let's hope for the best for India, always rooting for India. Go India, go the women in blue. And moving on to the next quick update, दोस्तों आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं from the world of fencing. Fencing में तनिष्का खत्री वो इकलौती ऐसी खिलाड़ी भारत की तरफ से बनी है जिन्होंने अपना राउंड ऑफ 32 में वुमेन्स एपी इंडिविजुअल को जीत कर विद अ कन्विंसिंग 15-10 की विक्ट्री थाईलैंड के नटापापट संगनियो के ऊपर, उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ गई टुवर्ड्स द राउंड ऑफ 16. जी हाँ, मतलब दिस इज गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फेंसिंग, बिकॉज तनिष्का खत्री वो इकलौती ऐसी खिलाड़ी है जो अब राउंड ऑफ 16 में साउथ कोरिया की फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट सॉन्ग से रा के साथ अब उनका आमना सामना होगा। वहीं फेंसिंग की दुनिया में अगर बात करें तो वुमेन्स एपी इंडिविजुअल में मितवा जेसंगबाई चौधरी या फिर मेंस इंडिविजुअल फॉइल में भी हम अगर देखें हेमश सिंह सनासम या उसके साथ साथ सचिन, ये सारे ही प्लेयर्स अपने अपने राउंड से यानी राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गए।
0: थैंक यू सो मच फॉर दैट साक्षी, अपडेट कमिंग इन फ्रॉम फेंसिंग। मगर बैडमिंटन से भी आपको अपडेट दीजिए तो इंडिया वर्सेस जापान क्वार्टर फाइनल्स आर ऑन राइट नाउ और एक्शन में है लक्ष्य सेन, उनके सामने कोडाई नारोका और इनका बहुत ही क्लोज इंकाउंटर चल रहा है, 1-1 चल रहा है क्योंकि पहला जो सेट था वो लक्ष्य सेन हारे थे 21-11 से, दूसरा सेट जीते 21-5 से, अभी 19-14 से पीछे है लक्ष्य सेन। याद दिलाएं इसके बाद हमारी सात्विक चिराग की जोड़ी होने वाली एक्शन में, तो होपफुली दिस टाई कैन बी टर्न्ड अराउंड एंड इंडिया हैज अ चांस बिकॉज आर इंडियन वुमेन आर ऑलरेडी आउट। द वुमेन्स टीम कैंपेन हैज एंडेड बिकॉज दे लॉस्ट अर्लियर टुडे टू थाईलैंड एंड दैट वाज अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय द इंडियन वुमेन टीम, बिकॉज सारे सिंगल्स मैचेस हम लोग हारे हैं एंड ओनली गायत्री गोपीचंद एंड ट्रीसा जोली गिव अस सम गुड न्यूज।
1: राइट, एंड नाउ मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग, जहां सुबह से हमारे पास शूटिंग में कुछ खास अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। वहीं अगर अब हम स्कीट की बात करें तो मेन स्कीट के जो आज प्रदर्शन रहे हमारे भारतीय शूटर्स का मेन स्कीट के अंदर वो काफी कॉन्ट्रास्टिंग रहे। मतलब अनंजीत सिंह नरूका सेकेंड प्लेस पर अभी बने हुए विद अ टोटल ऑफ 96 पॉइंट्स एंड ही हैज पुट हिमसेल्फ इन द प्राइम पोजिशन टू क्वालिफाई फॉर द इंडिविजुअल फाइनल्स इन द मेन स्कीट इवेंट। वहीं मिराज अहमद खान इस समय 23rd प्लेस पर है विद अ टोटल ऑफ 91 पॉइंट्स और भवतेक सिंह गिल 35th पोजीशन पर है विद अ टोटल ऑफ 86 पॉइंट्स। तो यानी अनंतजीत सिंह नरूका ने अभी भी भारतीय शूटर्स और शूटिंग के कैंपेन की उम्मीदों में वो रोशनी रखी हुई है डालकर कि हो सकता है जिस तरह से वो 96 पॉइंट्स के साथ अभी बैठे हुए हैं, he stands in a very good place to qualify for the individual finals also. अगर women's skeet standings की हम बात करते हैं जो आज की हमारी महिला shooters का प्रदर्शन रहा है women's skeet में, तो Raiza Dhillo has moved up to the 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhalewal इस समय 9th position पर है with a total of 89 points और Maheshwari Chauhan इस समय 16वें स्थान पर है with a total of 85 points.
0: थैंक यू फॉर दैट अपडेट अगेन साक्षी। और एक और आपको दे दें जाते हुए बस ब्रेकिंग न्यूज खबर, गुड न्यूज अगेन फॉर द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, श्रीलंका हैव लॉस्ट देयर सेकंड विकेट, सो होपफुली जस्ट 8 मोर टू गो, बस 8 विकेटें हैं और गोल्ड तय है हमारे। दैट्स ऑल फ्रॉम अस ऑन दिस अपडेट फ्रॉम आकाशवाणी, प्लीज स्टे ट्यून एंड एट 1:30 यू कैन कम बैक फॉर अनदर अपडेट।
1: And just to carry on with the quick one also over there, because we have a little amount of time, दर्शकों आप दोस्तों आपके साथ, तो quickly आपको बता दें कि भारत की जो अभी भी medal tally में table standing है वो 12वें स्थान पर बनी हुई है। कुल मिलाकर हमारे पास अभी 6 medals या 6 total medals है जिसमें 4 silver और 2 bronze है। Let's also not forget that these have come from the world of shooting. These have come from the world of shooting primarily, but for now, hoping that India gradually climbs up, it's a goodbye.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
3: You were listening to the
4: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போது

0: जो जिन्होंने अपनी रिकॉर्ड चेस करी थी सेमीफाइनल्स में, आज कुछ नहीं कर पाए. इट वॉज अ डेमोलिशन डर्बी जैसे कहा जाता है. 69 ऑल आउट, इंडिया विनिंग बाय 147 रन, एंड द इंडियन वुमेन हैव डिफेंडेड द गोल्ड विच दे वन इन हैंगझो 4 years अगो. फैंटास्टिक परफॉर्मेंस विद द बैट बाय स्मृति मंदना विद 79, शिफाली वर्मा 48, ऋचा घोष 22 बॉल 49, और उसके बाद विकेट्स में तो कमाल दिखाया डीपी शर्मा विद 3 विकेट्स, शिफाली का फिर से ऑल राउंड परफॉर्मेंस 2 विकेट्स, श्रियांका पाटिल विद 2 विकेट्स एज वेल, एंड श्री चन्नी विद 2. सो कमाल के परफॉर्मेंस, और इंडिया के पास पहला गोल्ड आ चुका है. जी हाँ, सुबह से आप लोग हमारे अपडेट सुन रहे होंगे, थोड़े से निराश हो रहे होंगे क्योंकि इंडिया का आज इतना अच्छा दिन नहीं गया, मगर साक्षी, व्हाट अ ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस विक्ट्री, एंड आई थिंक पूरे नेशन का जो मूड है आज is going to get much better and everybody is going to have a smile on their face.
1: Yes, indeed. और आज ये चेहरे की हंसी हटनी ही नहीं चाहिए, because हमारी लड़कियों ने हमें इतने सारे reasons दिए celebrate करने के लिए. सबसे ऊपर तो gold medal रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बताए कि ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए 8th लगातार 8वीं T20 इंटरनेशनल की जीत है. यस, दे हैव गॉन ऑन टू विन 8 T20 इंटरनेशनल्स ऑन अ ट्रॉट, एंड दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. और उसके साथ साथ श्रीलंका ने आखिरी बार भारत को 2024 के एशिया कप के फाइनल्स में हराया था, वो हम सब जानते हैं. उसके बाद से भारतीय महिलाएं उनको 8 बार T20 इंटरनेशनल मैचेस में हरा चुकी हैं. और एक और बहुत अच्छी खबर जो है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, वो ये है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ये जो 147 रन के मार्जिन से श्रीलंका को हराया है आज, वो अभिनव आज तक का सबसे बड़ा डिफीट मार्जिन है जो भारत ने किसी भी ओपोनेंट को दिया होगा. 147 इज द बिगेस्ट मार्जिन बाय व्हिच इंडिया हैज डिफीटेड एन ऑपोजिशन नेशन इन अ T20 इंटरनेशनल.
0: इट्स बीन अ ग्लोरियस सितंबर इंडियन वुमेन के लिए. एशिया कप में उन्होंने धमाल दिखाया और आज उन्होंने एशियन गेम्स में सुपर धमाल दिखा दिया है ये जीत पाकर. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रिमेंडस एफर्ट बाय द इंटायर इंडियन वुमेन्स कंटिजेंट, कोचेज कंटिजेंट, सबको बहुत ढेर सारी बधाइयां, और हमारे देशवासियों को भी बहुत ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि अब इंडिया का गोल्ड का खाता खुल चुका है. जी हाँ, एंड इट इज नॉट द ओनली गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम द एशियन गेम्स, वी हैव मोर गुड न्यूज फॉर यू, बिकॉज बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट कोडाई नारोका के खिलाफ. लक्ष्य सेन ने अपना मैच, पहला गेम हारा लक्ष्य सेन ने 11-21 से, दूसरा गेम जीता 21-5, मगर तीसरे गेम में ही वॉज डाउन 14-19, फिर भी कमबैक करके उन्होंने वो गेम जीती 21-19, वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट को हराया, इंडिया को वो 1-0 की लीड दी. एंड अनदर गुड थिंग इज सात्विक चिराग, हमारे फेवरेट डबल्स पेयर, अभी एक्शन में है. वो पहली गेम जीत चुके हैं अपने जापान के ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, एंड साक्षी कैन गिव अस डिटेल्स अबाउट दैट.
1: यस इंडीड, पहला गेम तो वो अपना जीत चुके हैं. हम बात करें सात्विक रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की अगेंस्ट द ओपोनेंट्स होकी और कोबायाशी, लेकिन सेकेंड गेम के अंदर भी इस समय बहुत तगड़ी फाइट दोस्तों चल रही है. जापान हैज ओनली अ 2-point लीड राइट नाउ ओवर द इंडियन ओपोनेंट्स, बिकॉज इनफैक्ट वो 2-point की लीड भी अब एकदम खत्म ही हो चुकी है, बिकॉज भारत के पास इस समय 18 पॉइंट्स है सेकंड गेम में और जापान के पास है 17. यानी गेम को मैच पॉइंट पर लाने के लिए इंडिया को 2 और अंक, इनफैक्ट कहना चाहिए जीतने के लिए 2 और अंक कमाने लगातार. अगर ऐसा होता है तो वेल, इंडिया शुड बी एबल टू गेव दिस एंटायर मैच इन देयर फेवर, बट राइट नाउ कीपिंग ऑल दोस होप्स एंड फेथ्स अप, इट्स टाइम फॉर अ मोमेंट फॉर अस टू जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय द विक्ट्री दैट हैज कम द वे एंड थ्रू द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम. अ वेरी बिग milestone achieved over here by the Indian girls. Kudos to India. जय हिंद हमारे हर देशवासी को. और इसके साथ ही हम कहेंगे कि यहाँ से ये जो खुशियों की हम जो आपको खबर और अपडेट लेके आ रहे हैं, ये सिलसिला आप शुरू हो जाए और बरकरार रहे. फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत. गुड बाय.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தினை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.
4: எஃப்எம் ரெயின்போ 102.8 இசையோடு என்றும் நீங்கள். புதுச்சேரி மக்களின் கவனத்திற்கு இனி மின் கட்டணத்தை பற்றிய கவலை வேண்டாம். பிரதம மந்திரி சூரிய இலவச மின்சார திட்டம்.

0: தங்கமான உறவுகளுக்காக பாண்டி ராம் தங்க நகை மாளிகை.
1: ஹால்மார்க் வெள்ளி பொருட்களுக்கு செய்கொலி செய்தாரும் முற்றிலும் இல்லை. ஒரு கிலோ வெள்ளிக்கு ₹7,000 தள்ளுபடி.
0: தங்கம் சேரும் கைராசி பாண்டி ராம் தங்க நகை மாளிகை, நேரு வீதி, புதுச்சேரி.
2: நேர்களே, இன்னும் சில நொடிகளில் ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரங்களை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
3: FM Rainbow.
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM Rainbow. अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का, तो चलिए आपको लिए चलते हैं एशियन गेम्स 2026 की अपडेट के लिए.
5: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
6: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी इस लाइव अपडेट में जो हम दोपहर के 3:30 बजे आपके लिए लेकर आ रहे हैं. मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त है अभिनव पुंछी. और आज की दिन भर की सबसे अच्छी और खूबसूरत खबर तो यही रहेगी दोस्तों कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आज श्रीलंका को हरा कर हमारे देश को पहला स्वर्ण पदक दिलवा दिया है. जी हाँ, द फर्स्ट गोल्ड मेडल हैज कम इन फॉर द इंडियंस थैंक्स टू आवर इंडियन गर्ल्स आउट देयर हु वेंट ऑन टू डिफीट श्रीलंका टुडे इन क्रिकेट बाय अ ह्यूज मार्जिन ऑफ 147 रन्स. 216 भारत ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 20 ओवरों में बनाए जिसमें उन्होंने सिर्फ अपने 3 विकेट गंवाए. और वहीं जब श्रीलंका इसी टारगेट को चेज करने के लिए उतरा तो पूरी की पूरी श्रीलंका की टीम सिर्फ 69 रन्स में सिमट गई, मात्र 15.4 ओवरों में सिमट गई, 69 एट अ टोटल ऑफ 69. एंड विद दैट नॉट ओनली डज दिस हेल्प कि भारत का जो अब मेडल टेबल में स्टैंडिंग है उसमें भी बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर आ चुका है. हम एक समय पे आज 18वें स्थान पर आ गए थे लेकिन अब थैंक्स टू दिस गोल्ड मेडल भारत मेडल टैली में 8वें स्थान पर आ चुका है. एक गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, their total medals being 7. And the other good news that has just come in is that ek aur medal Bharat ke liye is waqt assure ho chuka hai. 2 times Asian Games medalist 2018 aur 2023 ki, 2018 and 2023 usme bhi hum aapko ye bata de ki 2023 mein world silver medalist Roshi Bena Devi has beaten Chu Mansin of Macau by WDP to reach the semi-finals in women's 60 kilograms in Sanda Wushu at Asian Games 2026. Jiya, iska matlab ye hota hai dost तो कि भारत के लिए एक और मेडल अभिनव कंफर्म हो चुका है. एक ऐसा दिन फाइनली आ रहा है जहां हम सब के, आपके और मेरे चेहरे पे भी बहुत बड़ी मुस्कुराहट है.
7: जी हाँ, पूरे भारत में मुस्कुराहट होगी क्योंकि आर एथलीट्स आर डूइंग अस प्राउड. और याद दिलाएं, वुशु में एक और मेडल भी गारंटी हो सकता है बिकॉज आर्यन का क्वार्टर फाइनल उज्बेकिस्तान के सैदुलो के साथ बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, मेंस 56 kg. एंड अगर हम गारंटीड ब्रॉन्ज मेडल्स की बात कर रहे हैं तो इंडियन बैडमिंटन टीम, व्हाट अ परफॉर्मेंस, अ स्टनिंग विक्ट्री दे हैव हैड. दे हैव रीच द सेमी फाइनल्स एंड दे गारंटीड अ ब्रॉन्ज मेडल. और इंडियन टीम की शानदार जीत का पूरा क्रेडिट देना चाहिए लक्ष्य सेन को. फैंटास्टिक कम फ्रॉम बिहाइंड विक्ट्री हुई थी लक्ष्य सेन की. उसके बाद सात्विक चिराग ने अपना जोश दिखाया, उन्होंने स्ट्रेट गेम्स में मैच जीता. और फिर आयुष सेट्टी ने भी कोकी वाटरनाबी को हरा कर इंडिया ने जापान को हराया और पहुंच गए हैं क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल्स में.

0: तो शानदार प्रदर्शन हमारे इंडियन बैडमिंटन कंटिजेंट का, और उसके बाद बॉक्सिंग में भी जादूमणि सिंह ने अपना जादू दिखाया, हराया चंद्र बहादुर थापा को 5-0, 55 kg, राउंड ऑफ 32. सो इट्स बीन अ गुड आफ्टरनून हियर फॉर द इंडियन एथलीट्स, एंड होपफुली थिंग्स गेट बेटर फ्रॉम हियर ऑन.
1: राइट, एंड द अदर गुड न्यूज तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि जितनी खुशखबरी हम आपको दे सकते थे इस अपडेट के अंदर वो तो हमने दे दी कि भारतीय खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन आज का. लेकिन आप थोड़ी सी एक निराशाजनक खबर, लेकिन क्योंकि है जरूरी हम आपको देंगे जरूर, वो है स्विमिंग की दुनिया से, जिसमें 4x100 meter मेडले रिले के फाइनल्स में आज भारतीय स्विमर्स उत्कर्ष पाटिल, शब्दास, दानुष सुरेश, बेनिस्टन बेनिक्टन और आकाश माने ने बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन दिया. हाँ, हम 4x100 meter मेडले रिले के फाइनल्स में पहुंच जरूर गए, हमने प्रवेश कर लिया, लेकिन हमने उसके अंदर फिनिश किया है 8वें स्थान पर, यानी हम लास्ट आए हैं ऑलमोस्ट 3:44.26 seconds के अंदर. जी हाँ, इट वॉज डेफिनेटली अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फिनिश बाय आर इंडियन स्विमर्स आउट देयर इन द फाइनल्स, बट टू मेक इट टू द फाइनल्स ऑल्सो वी कैन कंसिडर इट टू बी एन अकम्पलिशमेंट. एंड नाउ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि बॉक्सिंग में मेन्स पूल ए का मैच भारत और श्रीलंका के बीच इस वक्त शुरू हो चुका है, एंड वी आर काउंटिंग ऑन द गुड ग्रेसेस ऑफ आर हॉकी प्लेयर्स की अभिनव, दिस गेम शुड ऑल्सो बी गोइंग इन आवर फेवर.
0: Of course, and we are looking for a comprehensive win in hockey. Indian men and women's team have been on a goal spree in Aichi Nagoya. India aur Sri Lanka abhi to 0-0 hai. Match abhi bas shuru hi hua hai. First quarter chal raha hai. Magar hum chahenge ki India achhi tarah apna goals kare aur Sri Lanka ko comprehensively haraye, kyunki do bari mil chuke hain aur dono bari Asian Games mein India jeeta hai. Aur ek aur bhi bada contest hai, wo bhi hamara hone wala hai 3:50 ko. हमारे टेबल टेनिस की विमेन्स टीम इज गोइंग टू हैव देयर क्वार्टर फाइनल इनकाउंटर. दैट इज अनदर वेरी वेरी बिग मैच व्हिच इज गोइंग टू बी हैपनिंग हियर फ्रॉम द एशियन गेम्स. सो होपफुली वी हैव सम गुड न्यूज टू रिपोर्ट यू व्हेन वी कम बैक नेक्स्ट विद आवर अपडेट फॉर द एशियन गेम्स फ्रॉम आईची नगोया. सो स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी, एंड होपफुली इंडिया कीप्स ब्रिंगिंग ग्लोरी, ऑल द एथलीट्स कीप डूइंग वेल.
2: நேயர்கள், இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெறும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரங்களை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now take you over to Ekta Nagar, Kevadia, Gujarat for the live broadcast of the 72nd National Film Awards ceremony being organized in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. Our commentators are Neelam Thapliyal in Hindi and Shailendra Singh Jadeja in English.
1: Ye Akashvani hai. अब हम आपको एकता नगर केवड़िया गुजरात लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम थपरियाल हिंदी में और शैलेंद्र सिंह जडेजा अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, मैं नीलम थपलियाल अपने साथी अंग्रेजी समीक्षक शैलेंद्र सिंह जाडेजा एवं आकाशवाणी वडोदरा और अहमदाबाद की पूरी टीम के साथ गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर से 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के शुभ अवसर पर देश के कोने कोने में अपने रेडियो से जुड़े सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ।
3: नमस्कार। Cinema lovers across the nation and around the globe, where Narmada flows with a timeless grace, under Sardar's gaze in this sacred space, the silver screen weaves its magic untold to crown Indian cinema's masters in gold. Along with my co-commentator, Ms. Neelam Thapliyal, and the team of Akashwani Vadodara in Ahmedabad, I, Dr. Shailendra Singh Jadeja, welcome our listeners to the live broadcast of the landmark 72nd National Film Awards. Good afternoon.
2: जी हाँ श्रोताओं, इस समय हम मौजूद हैं उस ऐतिहासिक समारोह स्थल पर जहां दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी आकाश को छूती खड़ी है। आज यहाँ भारतीय सिनेमा के वर्ष 2024 के श्रेष्ठ कलाकारों, फिल्मकारों और तकनीशियनों को देश के प्रतिष्ठित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। नर्मदा की लहरों की गूंज के बीच आज पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह ने दिल्ली की सीमा लांघी है और यह ऐतिहासिक क्षण अपने आप में एक फिल्मी पटकथा जैसा लगता है।
3: For the first time in our half a century, this historic ceremony has moved beyond the national capital to the majestic bank of the river Narmada. Today, Ekta Nagar serves as the ultimate

0: ultimate crossroads where art, culture and national unity converge.
1: श्रोताओं, कुछ कहानियां पर्दे पर उतरती हैं और कुछ सीधे दिल में. सिनेमा उन दोनों के बीच का वह पुल है जहां भारत अपनी कहानी खुद सुनाता है. कहानियां हमारी विरासत हैं, किरदार हमारी पहचान, और सिनेमा वह आईना है जिसमें दिखता है हमारा महान, अतुल्य, समृद्ध, गौरवशाली, विविधतापूर्ण, शक्तिशाली, सांस्कृतिक, अखंड भारत.
0: To truly appreciate the weight of this afternoon, we must look back to 1954 when the Government of India instituted these honors as the state awards for films. Established under the Ministry of Information and Broadcasting, their founding vision was to promote cinematic excellence, encourage artistic craftsmanship, and build a unified national identity through the medium of films.
1: श्रोताओं, आज मेरे सामने जो दृश्य है उसे केवल भव्य कहना पर्याप्त नहीं होगा. सभागार रोशनी से जगमगा रहा है. मंच पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रतीक चिन्ह अपनी पूरी गरिमा के साथ दिखाई दे रहा है. सामने की पंक्तियों में भारतीय सिनेमा के जाने माने चेहरे बैठे हुए हैं. यामी गौतम, कार्तिक आर्यन, धनुष, ममूटी, संजय मिश्रा, रणदीप हुड्डा, अनंत नाग और मनोज मुंतशीर जैसे कई जाने पहचाने चेहरे देख सकते हैं.
0: Over the past seven decades, the National Film Awards have evolved into the highest and most respected cinematic honor in our country. Unlike commercial award shows driven by box office collections, these awards celebrate artistic depth, socio-cultural relevance and technical mastery across all 22 constitutional languages, bringing mainstream blockbusters, regional gems and independent non-fiction onto the same prestigious national platform.
1: In puraskar paane wale chehron par kisi par utsukta hai to kisi par varshon ki mehnat ke baad milne wale samman ki pratiksha. ऐसे अवसर पर हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. श्रोताओं, सिनेमा की यात्रा भी ऐसी ही है, कभी तालियां मिलती हैं तो कभी आलोचना.
0: Let us listen to what Secretary INB Shri Chanchal Kumar ji has to say as his welcome address begins.
2: गौरव का विषय है. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार केवल सिनेमा की उत्कृष्टता का सम्मान नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास की यात्रा का आईना भी है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन पुरस्कारों में सम्मानित होने वाली फिल्में हमें बदलते भारत की झलक, भारत की कहानियाँ और इसमें भारत के लोग दिखाई देते हैं. हमें प्रसन्नता है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत ने जो आत्मविश्वास अर्जित किया है, भारतीय सिनेमा उसका साक्षी रहा है. 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इसमें देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की उपस्थिति दिखाई देती है. आज फीचर फिल्म श्रेणी में 34 भाषाओं की कुल 400 फिल्मों के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से जूरी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में 22 पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है. नॉन फीचर फिल्म में 24 भाषाओं की 161 फिल्मों के आवेदन थे, जिसमें से विभिन्न श्रेणियों में आज 23 पुरस्कार दिए जा रहे हैं. सिनेमा में उत्कृष्ट लेखन के लिए 3 पुरस्कार दिए गए हैं. इन पुरस्कार के चयन की पूरी प्रक्रिया में अपनी प्रतिबद्धता, परिश्रम और विशेषज्ञता योगदान करने वाले सभी श्रेणियों के सम्मानित ज्यूरीगण को मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ. सिनेमा, जिसे कभी केवल मनोरंजन का साधन माना जाता था, आज सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन चुका है. गढ़वाली और तुलु जैसी भाषाओं में बनी फिल्मों की राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति यह दर्शाती है कि भारतीय सिनेमा का निरंतर विकास हो रहा है. लोग अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के प्रति निरंतर और अधिक जागरूक और सक्रिय हो रहे हैं. हमें खुशी है कि बीते वर्षों में भारतीय सिनेमा ने तकनीक में ही नहीं बल्कि वैचारिक स्तर पर भी अपनी विशिष्ट वैश्विक पहचान बना ली है. इस वर्ष की विजेता फीचर फिल्मों में भारतीय सिनेमा की व्यापकता और रचनात्मक ऊर्जा स्पष्ट

0: दिखाई देती है। आर्टिकल 370 का प्रभावशाली ऐतिहासिक कथानक श्रीकांत में दृढ़ संकल्प और संघर्ष की प्रेरणादायी कहानी, मिथ्या का गहन आत्मविश्लेषणात्मक तथ्य, ब्रह्मयुगन का वातावरण, सिनेमाई शिल्प और उत्कृष्ट प्रस्तुति। इसी प्रकार पुष्पा 2 और कल्कि 2898 AD जैसी लोकप्रिय फिल्मों की सफलता मुख्य धारा के सिनेमा की निरंतर लोकप्रियता को दर्शाती है, जबकि चलचित्र खौन और कमिटी कुरुलू जैसी फिल्म भारत की समृद्ध क्षेत्रीय कहानी कहने की परंपराओं को भी सामने लाती है। नॉन फीचर फिल्म के विजेताओं ने भी उन कहानियों और जीवन की वास्तविकताओं को सामने लाया है जो अक्सर हमारे ध्यान से ओझल रहती थी। भंगार, श्रम, जीविका, संघर्ष और मानवीय गरिमा से जुड़े परिस्थितियों के बीच जीने की इच्छा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। रामनामी समुदाय की सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत करती है। मुझे खुशी है कि आज अनंत नाग साहब को मैं सामने देख रहा हूँ। मालगुड़ी डेज, अंकुर, हमारे किशोरावस्था की खूबसूरत स्मृतियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं। इन्होंने कन्नड़ के साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी भाषाओं की 300 से भी अधिक फिल्मों में स्मरणीय चरित्र निभाए। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के सम्मान के लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हर नई आवाज, हर नई भाषा और हर नई कहानी के साथ भारतीय सिनेमा अधिक समावेशी, सशक्त और वैश्विक मंच पर प्रभावशाली बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष वेव्स के दौरान कहा था, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। अब सिनेमा का दायित्व है कि वह हमारी ताकत को, विश्व को रूबरी होने का अवसर दे। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे गांव, हमारे लोगों में जो हौसले की कहानियां छिपी है उसे विश्व के सामने वह सामने लाए। आज हम एकता नगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा के छत्र छाया में एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन दिल्ली से बाहर करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस पहल में सरदार पटेल की वैचारिक दृढ़ता और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका समर्पण हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बना। आने वाले समय में यह पुरस्कार समारोह अन्य शहरों में भी आयोजित किया जाना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से सभी पुरस्कार विजेताओं तथा दादा साहब फाल्के सम्मान से अलंकृत श्री अनंतनाग जी का मैं एक बार पुनः हार्दिक उन्हें बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
1: आपका हार्दिक आभार माननीय सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार जी। सम्मान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आइए आज की इस गौरवपूर्ण संध्या के बहुप्रतीक्षित पल का पूरे उत्साह, सम्मान और उल्लास के साथ स्वागत करें, क्योंकि अब हम 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय पुरस्कार वितरण की प्रथम कड़ी में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
2: The National Film Awards are divided into three comprehensive primary sections: best writing on cinema, non-feature films and feature films. And finally, the icing on the cake is the Dada Saheb Phalke Award, India's best and the highest lifetime achievement award in cinema, recognizing a lifetime of extraordinary contribution to the growth and development of Indian film. So let's now begin with the best writing on cinema.
3: श्रोताओं, पुरस्कार वितरण के क्रम में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा हो चुकी है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए स्वर्ण कमल का सम्मान मिल रहा है कन्नड़ भाषा के लेखक डॉक्टर केचनूरू प्रदीप कुमार शेट्टी को। उनकी पुस्तक नानी रूदे निमा गागी, नानी रूडे नाना गागी, कन्नड़ सिनेमा दा थातवा मथु राजकीयम।
2: While the winner of the best book on cinema author is being felicitated, before that, let me tell you what is the jury doing about the best writing on cinema. It honors critical scholarship research and film journalism through Swarna Kamal medals. Non-feature films recognizes short stories, socio-environmental documentaries, biographical compilations, and technical achievements in non-fiction cinema, and feature films celebrating artistic performance and technical brilliance across narrative feature films in all Indian languages, including high honor.

0: like Swarna and Rajat Kamal medals are the final epitome of these awards.
1: श्रोताओं, शीर्षक का अर्थ है मैं तुम्हारे लिए हूँ, राज्य हमारे लिए है, कन्नड़ सिनेमा के दार्शनिक और राजनीतिक आयाम। श्रोताओं, यह पुस्तक कन्नड़ फिल्मों को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि समाज, रणनीति, राजनीति, विचारधारा और दर्शन को समझने के माध्यम के रूप में देखती है।
0: The best book on cinema publisher is also now getting felicitated. It is the Mirror Pustaka Publication House, represented by Ms. Soumya H. Publisher Mirror Pustaka receives the Swarna Kamal alongside the author for bringing this landmark film literature to life. Represented by Ms. Soumya H., the publishing house was praised for high editorial quality and dedication to film studies. Their work ensures that critical cinematic discourses reaches film scholars nationwide.
1: श्रोताओं, संजीव श्रीवास्तव को यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके हिंदी फिल्म समीक्षक के रूप में दिए गए विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक लेखन के लिए दिया गया है। उनका काम भारतीय सिनेमा के सौहार्द शास्त्र, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों और समकालीन फिल्म निर्माण को एक नई और गहरी समझ के साथ पाठकों के सामने रखने के लिए सराहा गया है।
0: Shri Sanjeev Srivastava takes home the Swarna Kamal for his insightful Hindi film criticism. His writings demonstrate a keen understanding of cinematic form, narrative nuances, and societal reflections in modern film. The next in the category is the non-feature films. The first mention is Chola Dora or Sui in Hindi. Director Shri Lakulesh Ghai receives a certificate.
1: श्रोताओं, यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म पश्चिम हिमाचल क्षेत्र में रहने वाले गद्दी समुदाय के जीवन, उनकी समृद्ध संस्कृति और उनकी अनूठी वेशभूषा पर आधारित है। फिल्म का मुख्य केंद्र गद्दी समुदाय की पहचान माना जाने वाला पारंपरिक पहनावा चोला डोरा है। श्रोताओं,
0: Director Lakulesh Ghai receives a special mention certificate for his subtle portrayal of traditional textile arts. The short film weaves a poetic visual thread around craft heritage and human emotion. The jury commended its tender observational technique. Next in the category is a special mention, Chola Dora or Sui, director Shri Jaimin Modi receiving a certificate.
1: श्रोताओं, इसी श्रेणी में अगला पुरस्कार मिल रहा है मलयालम फिल्म भद्रकाली नाटकम को। फिल्म भद्रकाली नाटकम को विशेष उल्लेख का पुरस्कार प्रमाण पत्र के रूप में दिया जा रहा है। यह फिल्म केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक लोक कला और अनुष्ठानिक कहानी कहने की कला को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर जीवंत और संरक्षित करती है।
0: इन प्रोग्रेस आर द नॉन फीचर फिल्म्स अवार्ड्स। नेक्स्ट इन लाइन इज द बेस्ट स्क्रिप्ट अबूर हिंदी एंड कश्मीर। स्क्रिप्ट राइटर श्री फराज अली रिसीव्स अ रजत कमल।
1: श्रोताओं, फिल्म के लेखक और निर्देशक फराज अली ने इस फिल्म के नाम में ओबुर यानी कि बादल शब्द का इस्तेमाल एक बहुत ही अनोखे और भावनात्मक रूपक यानी मेटाफर के रूप में किया है। आधुनिक दुनिया में हमारा डेटा, हमारी तस्वीरें, वीडियो, यादें इंटरनेट के क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रहती हैं। फिल्म के कश्मीरी ग्रामीण किरदारों के लिए इंटरनेट का यह क्लाउड पूरी तरह से नया और भ्रमित करने वाला है। वे मासूमियत में सोचते हैं कि उनका डेटा आसमान में तैरने वाले असली बादलों में चला गया है।
0: The next award in the category is Best Narration Voiceover, Little Planet, A Tale of Frogs in English. Narrator is Ms. Soundarya Jayachandran, who is receiving a Rajat Kamal. Soundarya Jayachandran takes the Rajat Kamal for an engaging, warm and articulate voiceover narration. Her vocal performance transforms a natural history film on amphibians into an enchanting story for viewers of all ages. The commentary brings clarity, humor and wonder to ecological science.
1: श्रोताओं, यह 44 मिनट्स की एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है जिसे दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के जंगलों में 9 साल की लंबी अवधि में फिल्माया गया है।
0: नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन परत 41 डिग्रीज चा मागावर। म्यूजिक डायरेक्टर श्री शिवपाल सिंह कांग रिसीव्स अ रजत कमल। शिवपाल सिंह कांग विंस फॉर हिज इवोकेटिव म्यूजिकल स्कोर दैट एलिवेट्स द फिल्म्स इमोशनल लैंडस्केप, blending acoustic textures with traditional melodies. His composition provides a certain

0: vastness of sea into a moving experience. Silver Lotus for the best cinematography for the film Life in Loom is presented to Sri Edmund Ransom.
1: When Britishers introduced the chemical dyes in India, every weaver lived.
2: श्री एडमंड रैंसम को अपनी भावपूर्ण काव्यात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है जो भारत के प्राकृतिक दृश्यों को एक जीवंत कैनवस में बदल देते हैं जहां मनोहर छायांकन गति हथकरघा बुनाई की कालातीत कलात्मकता और भावना का उत्सव मनाती है और अब गैर फीचर फिल्म श्रेणी में गोल्डन लोटस अवार्ड कर्तव्य ध्वनि के साथ तैयार हो जाए क्योंकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए हिंदी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के निर्देशक श्री आनंद एल राय प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल का सम्मान
3: आसमान छूती प्रतिमा के तौर पर विश्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा
0: The film is recognized for creative chronicle of the making of the world's tallest statue through dynamic cinematic storytelling, transforming an engineering marvel into a stirring tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, unity and national pride. Award for the best short film is being presented to Anushka Motion Pictures and Entertainments for the Marathi language film Hamsafar. On behalf of Anushka Motion Pictures and Entertainments, Shri Narendra Shanti Kumar Firodia receives the Silver Lotus.
2: एक करुणामयी सिनेमाई कथा के माध्यम से फिल्म हमसफर दर्शाती है कि कैसे साधारण वस्तुएं गहरे व्यक्तिगत महत्व की बन जाती हैं और उनका खोना एक गहरा खालीपन उत्पन्न करता है
0: Ladies and gentlemen, for the same film, director Shri Abhijit Arvind Dalvi is being awarded Silver Lotus. Through a compassionate cinematic narrative, the film reveals how ordinary objects become deeply personal, how their loss opens a poignant void, sparking a heartfelt search for memory, identity, and emotional connection.
2: बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए जेवी प्रोडक्शंस को मूक फिल्म टच्ड एज वाटर के लिए रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है जेवी प्रोडक्शंस की तरफ से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं फिल्म के एनिमेटर निर्देशक और निर्माता श्री जोशी बेनेडिक्ट
0: द फिल्म इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स सिंपल येट प्रोफाउंड आर्टिस्ट्री The film transforms grief into poetic animation, capturing love, loss, and hope through graceful visuals and extraordinary cinematic simplicity. The next award for the best non-feature film promoting social and environmental values goes to Hindi Rajasthani English language film Piplantri, a tale of eco-feminism. On behalf of Johnson Suraj Film International, Ms. Garima Singh is receiving the Silver Lotus.
4: ये जो क्षेत्र है पिपलांत्री पंचायत ये पूरी तरह मार्बल के खदानों के बीच में है
5: बहुत बड़े स्तर पर माइनिंग हो रही है आपको दिख रहा है कि
6: श्रोताओं इसी कड़ी में सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया है जॉनसन सूरज फिल्म इंटरनेशनल के बैनर तले बनी फिल्म पिपलांत्री अ टेल ऑफ इको फेमिनिज्म ने जिसे प्राप्त कर रही है मिस गरिमा सिंह यह फिल्म हिंदी राजस्थानी एवं अंग्रेजी भाषाओं में है इसे मिला है रजत कमल का सम्मान और साथ ही फिल्म के निर्देशक सूरज कुमार को भी मिलता है रजत कमल का सम्मान श्रोताओं यह 84 मिनट्स की एक बेहद प्रभावशाली फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री है जो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित पिपलांत्री गाँव की वास्तविक और प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है इस गाँव के पूर्व सरपंच और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्याम सुंदर पालीवाल ने एक अनूठी और ऐतिहासिक मुहिम शुरू की थी
7: नेक्स्ट इन कैटेगरी इज बेस्ट डॉक्यूमेंट्री राम नाम इन हिंदी प्रोड्यूसर बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत रिप्रेजेंटेड बाय मिस लिनेट डिमेलो शी इज गोइंग टू रिसीव रजत कमल प्रोड्यूसर लिनेट डिमेलो एक्सेप्ट्स द रजत कमल फॉर बैकिंग दिस स्ट्राइकिंग डॉक्यूमेंट्री ऑन द राम नामी सेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ The film documents a community that tattoos sacred names across their bodies as an act of devotion and social defiance.
6: श्रोताओं।

0: डॉक्यूमेंट्री रामनामी समुदाय पर केंद्रित है। यह समुदाय अपनी धार्मिक आस्था और पहचान को शरीर पर राम नाम का गोदन या टैटू बनवाकर व्यक्त करने के लिए जाना जाता है। फिल्म उनके विश्वास, परंपराओं और सामुदायिक जीवन को दस्तावेजित करती है।
1: एक्लेम्ड डायरेक्टर भरत बाला गणपति रिसीव्स द रजत कमल फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री रामनामी इन हिंदी। नेक्स्ट इन लाइन इज बेस्ट आर्ट्स कल्चर फिल्म मैं निदा इन हिंदी। Producer is Sampreshan Multimedia, represented by Shri Atul Gangwar, and he is going to receive a Rajat Kamal.
0: श्रोताओं, मैं निदा प्रसिद्ध शायर और गीतकार निदा फाजली के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। यह फिल्म सिर्फ निदा फाजली की जीवनी नहीं बल्कि उनके विचारों, संवेदनशीलता और कविता के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश है। उनके शेर दिल को छू जाते हैं। क्या खूब लिखा है उन्होंने कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। और जब वे कहते हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, तो ऐसा लगता है मानो पुरस्कार विजेताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए सराह रहे हों और भीड़ का हिस्सा नहीं बने बल्कि अपना अलग रास्ता चुनकर अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं।
1: नेक्स्ट इन लाइन इन द नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी इज बेस्ट बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन फिल्म काकोरी इन हिंदी। Producer KSR Brothers and Minty Mishra, represented by Shri Jaswinder Singh, he is going to receive a Rajat Kamal.
0: श्रोताओं, इस फिल्म का विषय 1920 के दशक के ब्रिटिश भारत की ऐतिहासिक काकोरी रेल कार्यवाही है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी दौर से जुड़ी हुई है। फिल्म में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों से जुड़े घटनाक्रम को ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
1: The same film, Best Biographical Historical Reconstruction Film, Kakori receives the Best Director Award in the Non-Feature Film category, and to receive the award comes Shri Kamlesh Kumar Mishra. He is going to receive the Rajat Kamal. Director Kamlesh Kumar Mishra wins for his meticulous historical research and sharp narrative pacing. He brings revolutionary figures to life with clarity, avoiding sensationalizing while honoring sacrifice. The jury praised its educational value and dramatic tension.
0: श्रोताओं, निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जा रहा है संथाली भाषा की फिल्म अंगेन को, और इसके लिए निर्देशक रवि राज मुर्मू को स्वर्ण कमल से अलंकृत किया जा रहा है। श्रोताओं, इस फिल्म में एक लोक कथा का उपयोग आधुनिक सामाजिक मुद्दों, विशेषकर महानगरों की ओर युवाओं के बड़े पैमाने पर पलायन यानी माइग्रेशन को दिखाने के लिए है। यह दर्शाती है कि कैसे विकास की अंधी दौड़ युवाओं को उनकी मूल भाषा, संस्कृति और पहचान से दूर कर देती है।
1: Next in line is the filmmaker Sumira Roy, claiming the top non-feature award, the Swarna Kamal, as both producer and director. Film Bhangar explores urban waste, informal labor, and human resilience with unyielding cinematic power. The film was unanimously hailed by the jury as a masterpiece of modern non-fiction storytelling.
0: श्रोताओं, भंगार फिल्म का केंद्र कबाड़ और उसे इकट्ठा करके जीविका चलाने वाले लोगों की दुनिया है। फिल्म ऐसी वस्तुओं और लोगों पर ध्यान देती है जिन्हें समाज अक्सर महत्वहीन या बेकार मानकर नजरअंदाज कर देता है। यह फिल्म कबाड़ बीनने और उसका पुनर्चक्रण करने वाले लोगों के जीवन, श्रम और रोजगार की वास्तविकता को दर्शाती है।
1: And now,

निर्माता, निर्देशक और टेक्नीशियंस और देश विदेश से पधारे अतिथिगण, मीडिया के साथियों और भारत सरकार एवं गुजरात सरकार के सभी अधिकारियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकत्र हुए हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, आप यहाँ पर पधारे और इस कार्यक्रम को गौरवमयी बनाया। जूरी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत की। ऑल ऑफ यू वर्क वेरी हार्ड, सॉ सो मेनी मूवीज, हैड वेरी डिटेल्ड डिस्कशंस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट यू पुट इन।

0: आई शेयर्ड विद यू हम किस तरह से नौजवानों के लिए एक नया टैलेंट डेवलपमेंट का प्रोग्राम बना रहे हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT. वी स्टार्टेड द फर्स्ट कैंपस इन मुंबई इमिडिएटली आफ्टर वेव्स. एंड वेव्स वॉज सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, सच अ ग्रेट समिट. एज अ फॉलो अप टू सो मेनी थिंग्स विच हैव हैपेंड आफ्टर वेव्स, IICT was one of them. And I'm very happy to share with you, while the permanent campus is being constructed in the NFDC campus building, we have started the IICT, and by now about 380 students have already taken admissions in 13 courses. Most important point is, the entire course curriculum is designed by the industry. We had promised you that this will be state-of-the-art education, which is totally driven by industry, totally driven by the modern changes in technology, and that is what we have delivered in IICT. And now, Honorable Prime Minister has approved 15,000 creative labs across the country, जिससे हमारे youth को एक नई opportunity मिलेगी, नई technologies को सीखने की, अपनी creativity को market में लाने की, भारत के जो विविध संस्कृति है, the diverse culture that we have, उसको देश में, दुनिया में पहुंचाने की. मैं आपसे कुछ छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं. एक, वी वॉन्ट टू स्टार्ट अ वे बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई टैलेंट, रॉ टैलेंट, टैलेंट विच डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी इन अ बिग सिटी, टैलेंट विच डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी मेंटोर्ड और बी गाइडेड बाय सम रियली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम द फिल्म वर्ल्ड. How do we create a program for that talent? हमने आपके फिल्म वर्ल्ड से हमारे प्रसून भाई जोशी को सरकार में ले लिया है दूरदर्शन में. प्रसून भाई, why don't you wave at the... So now he is with us. So he was always with us. Now we have given him a very big task. Young talent को, raw talent को identify करने के लिए प्रसून भाई will be making a team. And I'll be requesting all of you from the film world, जो यहाँ पे present है और जो present नहीं है, उनमें से भी please volunteer, please those who want to contribute to this journey, where raw talent, where good talent, where talent which is hidden in the villages and small towns of our country, उस talent को एक नया मंच मिले, उस talent को एक बड़ा stage मिले, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं. हेल्प करोगे? कोई वॉलंटियर्स यहां पे? कैन आई सी वन हैंड, टू हैंड्स, थ्री हैंड्स? ओ वाओ, ये तो बात बन गई. इतने लोग तैयार है साथ. प्रसून भाई, आपका काम आधे से ज्यादा पूरा हो गया. थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट सपोर्ट. दूसरा है वेव्स 2027. वेव्स 2027 अगले साल अक्टूबर में करेंगे. अब तक बहुत अच्छे तरीके से वेव्स का फॉलोअप चल रहा है. वेव्स बाजार में बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और अब इस अगले एडिशन का 2027 में विल डू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर आइडियाज, शेयर योर थॉट्स, एंड मेक वेव्स एन इंस्टीट्यूशन which will be there for the creative world for many, many years. Thank you very much, friends. And once again, मैं माननीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. आप यहाँ पधारे, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय गवर्नर साहब को धन्यवाद देता हूँ, आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार.
1: Next in line, we now go to feature films awards in various languages of India. Such enigmatic and charismatic is the charm of Indian cinema that I cannot help but tread into my co-commentator Neelam's

0: territory and recite these few couplets in Hindi. Zindagi ye aina hai aur cinema us aina-e wajood par chamakti hui roshni. Har parda ek daastan kehta hai, har tasveer mein ek fasana hai. Kahin ashk hai, kahin muskurahat, kahin ek khwab suhana hai. Aur inhi daastanon ki darkhanon mein gungunata hamara Hindustan hai. Let's now go on to the feature films category. Special mention about two films, Maya Jahan in Talim, Tamil. Sound mix engineer Shri Suren ji would be now receiving a certificate. Sound engineer Suren ji receives a special mention certificate for his delicate acoustic mixing in Maya Jahan. His sound mix captures the natural ambience of rural landscapes and intimate dialogue. The subtle sound design deepens the film's emotional intimacy. Second in the category of special mention is the film Captain Miller in Tamil. Actor Shri Dhanush is coming on to the stage to receive this award. Superstar Dhanush earns a special mention certificate for his intense, raw and fiery performance in Captain Miller.
1: श्रोताओं, संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्मों के पुरस्कार का समय आ गया है, जिसमें दो फिल्मों को चुना गया है, तुलु फिल्म और गढ़वाली फिल्म। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म का पुरस्कार मिला है इम्बू को, जिसके निर्माता पिक्चर स्टूडियोज की ओर से श्री प्रशांता कुमार बी ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान, और फिल्म के निर्देशक शिवाध्वज शेट्टी को भी मिल रहा है रजत कमल का राष्ट्रीय सम्मान। श्रोताओं, यह फिल्म आज के डिजिटल युग में समाज के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक है, जो मुख्य रूप से तीन संदेश देती है। केवल स्मार्टफोन खरीद लेना काफी नहीं है, बल्कि उसके सुरक्षित उपयोग की समझ होना बेहद जरूरी है। यह फिल्म साइबर स्कैमर्स के तौर तरीकों को उजागर करती है और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी देती है। कहानी यह सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक तकनीक जहां एक तरफ विकास का जरिया है, वहीं अगर उसे बिना सोचे समझे अपनाया जाए तो वह हमारी पारंपरिक जीवन शैली और मानसिक शांति को कैसे बर्बाद कर सकती है।
0: प्रोड्यूसर सुनील नायक टेक्स होम द रजत कमल फॉर ब्रिंगिंग गढ़वाली कल्चर टू द नेशनल स्टेज। ढोली फिल्म सेंटर्स अराउंड ट्रेडिशनल फोक म्यूजिशियंस एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स इन द हिमालयन हिल्स। द फिल्म वाज कमांडेड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग कल्चरल प्रिजर्वेशन वैल्यू।
1: श्रोताओं, ढोली की कहानी उत्तराखंड की पारंपरिक ढोल सागर यानी ढोल बजाने की प्राचीन कला और इसे जीवित रखने वाले ढोली समुदाय के संघर्ष पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि उत्तराखंड में कोई भी शुभ कार्य सामाजिक या धार्मिक ढोल के बिना पूरा नहीं होता।
0: बेस्ट गढ़वाली फिल्म ढोली डायरेक्टर श्री दिनेश पुंडलिक भोसले रिसीव्स अ रजत कमल। He wins for his sensitive portrayal of mountain life and artistic heritage. His direction captures breathtaking Himalayan landscapes alongside poignant human drama. The film gives a powerful voice to Uttarakhand's regional storytellers. And the next in line is best Telugu film Kamiti Kurallo. Producer Pink Elephant Pictures and Sri Radha Damodara Studios, represented by Miss Niharika Konidela.
1: श्रोताओं, कमेटी कुरोल्लू आंध्र प्रदेश के एक गांव की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म है, जिसमें बचपन के दोस्तों के बीच के गाढ़े रिश्तों, आपसी मनमुटाव, ग्रामीण राजनीति और समय के साथ बदलते सामाजिक समीकरणों की कहानी कहती है।
0: The same film also receives the best director award. Shri Yadu Yamsi wins for his dynamic ensemble staging and nostalgic narrative framing. He manages a large cast of newcomers while maintaining crisp dramatic control. His direction captures authentic rural warmth and emotional coming of age moments. Next in line is the best Odia film Lahari. Producer Jilik Motion Pictures, represented by Miss Jilik Bhattacharji, is on the stage to receive the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, इसी पिक्चर के निर्देशक अमृत्य भट्टाचार्य को भी रजत कमल का पुरस्कार मिल रहा है। यह एक बेहद प्रशंसित और समीक्षकों द्वारा सराही गई ओडिया फीचर फिल्म है। इस फिल्म को कलात्मक सिनेमा के क्षेत्र में अपनी अनूठी कहानी और बेहतरीन प्रस्तुति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।
0: Lahari delves into human relationships, artistic passions and coastal life realities. The film represents a bold aesthetic leap forward for contemporary Odia cinema. The film stands as a triumph of independent artistic cinema. Next in line is the best Marathi film,

0: முக்கம் போஸ்ட் பாம்பில் ஒலை வாடி. ப்ரொடியூசர் விவேக் பிலிம்ஸ் ரெப்ரசென்டட் பை ஸ்ரீ பரத் திலீப் சித்தோடே. He is there to receive the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, यह फिल्म 1942 के स्वतंत्रता संग्राम के समय की एक मजेदार काल्पनिक कहानी है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर गलती से कोंकण के एक छोटे से गांव बॉम्बिलवाड़ी में आ जाता है. इसके बाद गांव के सीधे साधे लोग और एक स्थानीय नाटक मंडली मिलकर हिटलर का सामना अपने अनोखे और हास्यास्पद अंदाज में करते हैं, जिससे पूरी फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी पैदा होती है.
0: Next film in the language category is Best Manipuri Film Sunita, producer Skyline Pictures and Company, represented by Shri Yomanam Brojen Singh. Producer Yomanam Brojen Singh accepts the Rajat Kamal for backing this powerful social drama. Sunita highlights female resilience, social struggles and cultural endurance in Manipur. The film brings vital stories from the Northeast to national prominence.
1: श्रोताओं, यह फिल्म श्रीमती मोइंगा मोइरांगतम सुनीता देवी के वास्तविक जीवन की सच्ची घटनाओं और उनके संघर्षों पर बनी एक बायोपिक है, जिसमें उनका अपनी दृष्टिहीनता से संघर्ष, शिक्षा के लिए दृढ़ता और पारिवारिक चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणादायक यात्रा दिखाई गई है.
0: डायरेक्टर श्री यमुनम अजीत सिंह ऑल्सो रिसीव्स द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर द सेम फिल्म सुनीता. He wins for his realistic, compassionate and directorial approach. He draws deeply affecting performances from his cast while depicting real social challenges. Next in line is the best Malayalam film, Feminichi Fatima, producer 1001 Stories and AFD Cinemas, represented by Shri Tamar Mon Karuanta Vallapil.
1: श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी फातिमा नाम की एक आम गृहिणी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने घर और समाज की पितृसत्तात्मक सोच और पाबंदियों से आजाद होने की कोशिश करती है. ज्यूरी ने घरेलू पितृसत्ता पर इसके मजाकिया और सटीक कटाक्ष की सराहना की है.
2: Flowing Monjovi Films LLP, RS Creations and Kathputli Arts and Films की तरफ से श्री शरद मित्तल को रजत कमल का सम्मान.
3: Hi Jack, how are you? Gracie.
4: The story beautifully blends grief, love and cultural identity with remarkable sensitivity. The film offers deeply rooted narrative marking significant milestone for Konkani cinema. And the director of the film, Shri Radhesham Pipalwa, is receiving the Silver Lotus.
2: फिल्म मॉग असुम को एक ऐसी भावनात्मक कहानी के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है, जो दुख, प्रेम और सांस्कृतिक पहचान की बेहद संवेदनशीलता से सामने लाती है. अपनी जड़ों से जुड़ी ये फिल्म कोंकणी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.
4: Also, the director of the film, Shri Agnello Braganza, being awarded with Silver Lotus.
2: मॉग असुम कोंकणी सिनेमा में अपनी अनूठी कहानी और भावपूर्ण अंदाज के कारण एक मील का पत्थर साबित हुई है. और सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म का पुरस्कार फिल्म मिथ्या को प्रदान किया जा रहा है. फिल्म के निर्देशक श्री सुमंत भट्ट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारते हुए.
4: The film is recognized for its profound portrayal of childhood trauma, angst, grief and fragile illusions of stability in fractured society. The award for the best Hindi film is awarded to Shrikant, produced by Super Cassettes Industries Private Limited, Shock and Cheese Films Production. Shri Bhushan Kumar receives the Silver Lotus.
5: What is your name, young man?
6: Sir, my name is Shrikant Bola.
2: सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रीकांत दृष्टिबाधित उद्योगपति की जीवनी पर आधारित एक प्रेरणादायक हिंदी फिल्म है, जो इंसानी जज्बे की जीत के गहन मानवीय चित्रण के लिए प्राप्त कर रही है राष्ट्रीय पुरस्कार. इसी फिल्म के लिए रजत कमल ग्रहण करते हुए फिल्म के निर्देशक श्री तुषार हीरानंदानी.
4: Shrikant transcends the conventions of biographical drama to deliver a story of hope with honesty and grace. The next award is for Best Gujarati Film, conferred to Maran, produced by Cineman Productions Limited, and Sri Amit Desai to receive.

0: Receive the silver lotus.
1: Beauty and a beast. भेगा था।
2: फिल्म मारण अन्याय का सामना करती महिलाओं के साहस, दृढ़ता और एकजुटता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है और समकालीन गुजराती सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसी फिल्म के निर्देशक श्री अभिषेक जैन को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है।
0: The film is recognized for its bold exploration of gender violence and patriarchal oppression through a powerful narrative. Thank you, Honorable President and distinguished guests. May I now request Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel, to address the gathering.

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 कार्यक्रम में हम सभी के साथ मंच पर उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के राज्यपाल माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग के सचिव श्री चंचल कुमार, फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष श्री जयराज, नॉन फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष श्री असीम सिन्हा, बेस्ट फिल्म लेखन ज्यूरी के अध्यक्ष श्री ए चंद्रशेखर, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल और 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माता और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की धरती गुजरात में पधारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया तथा आप सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। गुजरात गांधी जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। मित्रों, अगर सरदार पटेल न होते तो शायद जिस भारत को आज हम देखते हैं वो भी नहीं होता। सरदार साहब

आदरणीय राष्ट्रपति महोदया की प्रेरक उपस्थिति में आयोजन हमारे लिए गर्व का अवसर है। आज एकता नगर में देश के फिल्म जगत का यह राष्ट्रीय सम्मान एक और संदेशा भी देता है। हमारी एकता जितनी विराट है उतनी ही हमारे सर्जकों फिल्म मेकर्स की सृजन शक्ति भी विशाल है। सिनेमा केवल मनोरंजन की ही नहीं परंतु समाज का प्रतिबिंब है, संस्कृति और संवेदनाओं को व्यक्त करने का सक्षम मंच है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में भारत ने विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाई है। इस पहचान को और गति देने में भारतीय सिनेमा उद्योग सॉफ्ट पावर की बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक फिल्म भाषा की सरहद पार कर सकती है, कलाकार करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं, एक कहानी विश्व को भारत के साथ जोड़ सकती है। ऐसी ही विविध भाषाओं, संस्कृतियों और भारत के कोने कोने में मौजूद प्रतिभाओं में से उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के हाथों सम्मानित करने का आज का अवसर है। श्री ममूटी, श्री कार्तिक आर्यन, श्रीमती यामी गौतम हमारे बाल कलाकारों और इन प्रेरणादायी कहानियों के पर्दे पर साकार करने वाले सभी कलाकारों, निर्देशकों, लेखक और टेक्नीशियनों को अभिनंदन एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह समारोह गुजरात के लिए दुगुनी खुशी का अवसर है, क्योंकि गुजराती फिल्म मारण को भी बेस्ट गुजराती फिल्म का पुरस्कार मिल रहा है। सिनेमा जगत के इतने दिग्गज रचनाकारों का गुजरात की धरती पर संगम केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि नई रचनात्मक यात्रा की शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने उद्योग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी तथा सेमीकॉन जैसे इमर्जिंग सेक्टर तथा टूरिज्म में अपनी विशेष पहचान बनाई है। अब इस डेवलपमेंट जर्नी में क्रिएटिव इकोनॉमी को भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाने की मंशा है। गुजरात के पास प्रकृति और विरासत का अद्भुत खजाना है। कच्छ का सुंदर सफेद रण है, नर्मदा, तापी और साबरमती जैसी पवित्र नदियाएं हैं, गिरनार और सापुतारा जैसे रमणीय पर्वत हैं, एशियाटिक लायन और गिर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एट्रैक्शन है, धौलावीरा और लोथल जैसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो देश के सबसे लंबी 2300 किलोमीटर से अधिक की समुद्री तटरेखा भी गुजरात के पास है। गुजरात अपनी पौराणिक विरासत, सदियों पुरानी परंपराएं, अनूठी संस्कृति, विश्व प्रसिद्ध गरबा, लोक मेले और उत्सवों से समृद्ध है। गुजरात के अद्भुत लोकेशन के कारण ही ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर, सत्य प्रेम की कथा, कसुम्बो, काइपोचे, फोर्स 3 और लालो जैसी फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के सभी निर्माताओं और निर्देशकों को हमारा निमंत्रण है, गुजरात के इन विविधपूर्ण पर्यटन लोकेशन का अनुभव कीजिए और अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए गुजरात को डेस्टिनेशन बनाइए। गुजरात फिल्म निर्माताओं के लिए रिक्वायर्ड परमिशन, फिल्म प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तथा प्रोड्यूसर फ्रेंडली अप्रोच जैसे इनिशिएटिव्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात को फिल्म प्रोडक्शन तथा ओटीटी के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस बनाने के उद्देश्य गुजरात सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई है। हमारा प्रयास है कि गुजरात में फिल्मों के शूटिंग लोकेशन से आगे बढ़कर प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग क्षेत्र का पूरा इकोसिस्टम बने। हम एक ऐसी संगीन संरचना बनाना चाहते हैं कि गुजरात का युवा अपने शहर या गांव में रहकर वर्ल्ड क्लास फिल्म, एनिमेशन, VFX या डिजिटल कनेक्ट पर काम कर सके। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के आयोजन से गुजरात की यश कीर्ति में एक नया मोर पंख जुड़ा है। हमें इस अवसर का सौभाग्य देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी
और श्री

0: तेजस्विनी वैष्णव जी का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने में, गुजरात को अग्रेसर रखने में आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं। सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके भविष्य के प्रयासों में निरंतर सफलता प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।
1: श्रोताओं, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के संबोधन के बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है और प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की के पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिसकी श्रेणी में अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का।
2: द फिल्म इज रायन, प्रोड्यूसर सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, रिप्रेजेंटेड बाय मिसेस कावेरी कलानीति, शी वुड बी देयर टू रिसीव द रजत कमल।
1: श्रोताओं, रायन निर्माता सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड की ओर से श्रीमती कावेरी कलानिधि को रजत कमल का पुरस्कार मिल रहा है और निर्देशक धनुष को भी रजत कमल का राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है।
2: The production combines high technical scale with visceral family drama. It stands as a commercial and critical highlight of modern Tamil cinema. Feature film best in the category of the language Tamil is Rayan, and the director is Shri Dhanush. Dhanush claims his second award of the ceremony, winning Best Director for guiding his 50th landmark film. His directorial vision crafts intense action, deep brotherhood ties, and relentless moral conflict. His staging proves his commanding authority both behind and in front of the camera. The next category is Best Bengali Film, Chalchitra Ikon, producer Anjan Dutt Production, represented by Shri Neel Dutt.
1: श्रोताओं, यह फिल्म निर्देशक अंजन दत्त की खुद की यादों और उनके वास्तविक जीवन पर आधारित है। यह फिल्म उनके द्वारा उनके गुरु भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता मृणाल सेन के जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें समर्पित एक भावुक श्रद्धांजलि है।
2: Producer Neel Dutt accepted the award for this deeply personal homage to legendary auteur Mrinal Sen. The film explores the mentor-disciple relationship in 1980s Kolkata film circles. It is also receiving the Best Director Award for the same film, Chalchitra Ikon. And here comes Shri Anjan Dutt. Veteran artist Anjan Dutt wins for directing a deeply reflective, semi-autobiographical tribute to his mentor.
1: Shrotaon, up. श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म में जुई फूल को दिया जा रहा है सम्मान। इसके निर्माता श्री जादूमोनी दत्ता, मिस रीता दत्ता और मिस नंदिनी शर्मा दत्ता। मिस रीता दत्ता रजत कमल का पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। इसी फिल्म के निर्देशक श्री जादूमोनी दत्ता को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। श्रोताओं, यह फिल्म एक असमिया विधवा और एक नागा महिला के बीच के मानवीय रिश्तों और मातृत्व की एक बेहद संवेदनशील कहानी को दर्शाती है।
2: बेस्ट असमिस फिल्म जॉयफुल रिसीव्स अवार्ड्स फॉर प्रोड्यूसर एंड आल्सो फॉर द डायरेक्टर। श्री जादूमोनी दत्ता इज आल्सो देयर टू रिसीव द अवार्ड एज अ डायरेक्टर। It is one for guiding Joyful with deep compassion and documentary-like realism. The camera work focuses on ordinary lives caught in territorial tensions, finding hope in shared humanity. The direction delivers a quiet yet unforgettable emotional impact. Next in line is the best action direction film, Maharaja in Tamil language, wins the Best Action Direction Film Award. Stunt choreographer Shri Anil Arasu will be there to receive the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन में तमिल पिक्चर महाराजा के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार मिल रहा है अनिल अरसु को। इन्हें मंच पर पुरस्कार ग्रहण किए करते हुए हम देख सकते हैं।
2: The next in line is the award for the best choreography, and in Hindi is 3-2 film choreographer Shri Vijay Ganguly comes on stage to receive the award.
1: श्रोताओं, गीत आज की रात के लिए विजय गांगुली को मिल रहा है।

0: सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड। सिनेमा में कभी एक धुन कहानी कहती है, कभी एक शब्द और कभी एक कदम।
1: The sequence became a national pop culture moment demonstrating choreography's power in mainstream cinema. Here's Vijay Ganguly receiving the Rajat Kamal. Next in line is the award for best lyrics in Hindi for the film Maidan. Lyricist Shri Manoj Muntashir receives the Rajat Kamal.
0: Shrotao, Maidan ke liye, sarvashreshth geet ke liye Manoj Muntashir ko diya ja raha hai. पुरस्कार। फिल्म में यह गाना कठिन परिस्थितियों में हौसला और लचीलापन बनाए रखने की भावना को दर्शाता है।
1: The poetic lyrics that capture national pride and sporting grit, Manoj Muntashir comes on the stage and receives the award for his lyrics in the film Maidan. Next in the category is best music direction background score. Amaran film Tamil, music director Shri G.V. Prakash Kumar, he is there to receive the award on stage.
0: फिल्म अमरन, तमिल फिल्म अमरन के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक जी वी प्रकाश कुमार के लिए को मिल रहा है रजत कमल का सम्मान।
1: द पावरफुली एंड इमोशनली चार्ज बैकग्राउंड स्कोर रियली टचेस द हार्ट। फिल्म अमरन म्यूजिक डायरेक्टर श्री जी वी प्रकाश कुमार रिसीविंग द बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर अवार्ड। नेक्स्ट इन लाइन इज द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन सॉन्ग्स फॉर द फिल्म Article 370, music director Shri Shashwat Sachdev comes on stage to receive this award.
0: Shrotao, Sangeet Nirdeshan aur Geet mein ab mil raha hai Article 370 ke liye geeton ke Sangeet Nirdeshan ke liye Shashwat Sachdev ko Rajat Kamal ka samman.
1: The compositions of this film combine modern orchestral arrangements with patriotic vocal lines. The songs elevate the film's narrative momentum without distracting from the tension. Next in line is the category best makeup for Kamiti Kurallu Telugu film. Makeup artist Shri Pasupuleti Ravi Kumar comes on stage to receive the award.
0: श्रोताओं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें कई नाम शायद फिल्म देखते समय दिखाई नहीं देते, लेकिन पर्दे पर जो कुछ दिखाई देता है उसकी नींव इन्हीं लोगों के काम से तैयार होती है। और सर्वश्रेष्ठ मेकअप कमेटी कुरुलु के लिए पी रवि कुमार को मिलता है रजत कमल का सम्मान।
1: The next award is best costume design for the film Pushpa, The Rule Part 2. Telugu film costume designer Shri Sheetal Iqbal Chand Sharma receives the award. Sheetal Iqbal Chand Sharma wins for creating distinct, larger than life character attire rooted in rustic textures. His designs give distinct visual identity to rival factions and regional cultural attire. The costumes played a massive role in shaping the film's iconic visual style. The next award is Best Costume Design again. Pushpa The Rule Part 2, Telugu costume designer Miss Dipali Noor also receives the co-award.
0: Shrotao, Sarvashreshth Costume Design ke liye do designers ko सम्मानित किया गया है। पुष्पा द रूल पार्ट टू में दीपाली नूर और पुष्पा द रूल पार्ट टू के लिए ही शीतल शर्मा को रजत कमल से सम्मानित किया गया है।
1: नेक्स्ट इन लाइन इज बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन कल्कि 2898 एडी इन तेलुगु। प्रोडक्शन डिजाइनर श्री नितिन जिहानी चौधरी रिसीव्स द अवार्ड फॉर दिस फिल्म कल्कि 2898 एडी बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन।
0: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जो तमिल में बनी है मूवी कल्कि 2898 एडी तेलुगु मूवी, नितिन जिहानी चौधरी को मिल रहा है रजत कमल का सम्मान।
1: और आइए अब आपको स्टेज पे ले चलते हैं, वहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है।
2: The award recognizes masterful crafting of pace, narrative flow, emotional depth and complex action sequences.
3: और अब बेस्ट साउंड डिजाइन का अवार्ड हिंदी फिल्म भूल भुलैया पार्ट 3 के लिए श्री मानस चौधरी को प्रदान किया जा रहा है। आप पा रहे हैं रजत कमल।
2: The sound design serves as a vital narrative and psychological tool that enhances the film's horror beyond conventional jump scares through the use of

0: The luminous black and white cinematography transforms light and shadow into powerful storytelling tools.
1: सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए श्री अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के लिए रजत कमल का सम्मान।

0: गीत नवसाची गोराई माजी में उनकी शक्तिशाली प्रस्तुति और शास्त्रीय संगीत में निपुणता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सम्मानित अतिथिगण, पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी से विनम्र आग्रह करते हुए उन्हें संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी।
1: भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मान्य श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मान्य डॉक्टर एल मुरुगन जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय सचिव श्री चंचल कुमार जी, फीचर फिल्मों की जूरी के अध्यक्ष माननीय श्री जयराम जी, नॉन फीचर फिल्मों के जूरी के अध्यक्ष माननीय श्री असीम सिन्हा जी, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन की जूरी के अध्यक्ष माननीय श्री ए के चंद्रशेखर जी, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले माननीय श्री अनंत नाग जी, फिल्म जगत के महानुभाव तथा देश के कोने कोने से पधारे सभी सम्मानित पुरस्कार विजेताओं, भाइयों और बहनों, आज जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, फिल्म पुरस्कार लगभग दिल्ली में होते थे, पहली बार मैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आभार

आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिल्ली से बाहर प्रथम बार इस फिल्म पुरस्कार को स्थानांतरित किया, तो वो भी गुजरात में किया, और गुजरात में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वास्तव में 562 रियासतों में बटा देश आजाद हो भी गया था। यदि वो इन खंडों में बटा होता तो आज भारत कैसा होता अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे लौह पुरुष जिनके व्यक्तित्व को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो मान दिया, वो सम्मान दिया, जिसके वो सही अर्थों में अधिकारी थे, आज यह बहुत बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्थल पूरे देश के लोगों के लिए भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का केंद्र बन चुका है। आप फिल्म जगत के लोग हैं, आप अपनी विधा के द्वारा जिस सरलता से, जिस सहजता से समाज की हर वर्ग की चुनौतियों को लोगों के दिलों तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज फिल्म जगत ने भारत की सभी भाषाओं को समृद्ध करने का काम किया है, भारत की राष्ट्रभाषा से देश को जोड़ने का काम किया है, लोगों को एक दूसरे से पहचान दिलाने का काम किया है। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। एक छोटा सा निवेदन भी मैं जरूर करूंगा, भाई और बहनों, हम मनोरंजन की दुनिया में आज बहुत तनाव में दुनिया गुजर रही है, बहुत डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, लेकिन आप उनको भी बाहर निकालने का काम करते हैं। इसी के साथ गुजरात प्रांत एक बहुत बड़ा अभियान चला रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें नेतृत्व है। आज हमारी युवा पीढ़ी, हम सब लोग हर दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत कमजोर हो रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनको कोई सुनता नहीं था, आज से 40 वर्ष पहले इस देश में कैंसर को कोई नहीं जानता था, डायबिटीज को कोई नहीं जानता था, हार्ट अटैक को कोई नहीं जानता था, पेनक्रियाज फेल होती कोई जानता नहीं था। हम जितने बैठे किसी के पिताजी ने कभी घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज हम सब लाइन में बैठे हैं। 20-20 साल के बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे कैंसर से जूझ रहे हैं, पेनक्रियाज फेल हो रही, कारण के बिना कार्य नहीं होता, और इसका बहुत बड़ा कारण आज हमारा जो पर्यावरण है वो तेजी से बिगड़ रहा है। आपने और हमने फिल्मों के माध्यम से नेचुरल फार्मिंग की ओर लोगों को प्रेरित करने का काम करना चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी तरीके आ सकें वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना चाहिए। ऐसा खान पान जिससे लोग स्वस्थ और निरोग होकर के जी सकें। आज भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हम उन्नति कर रहे हैं। यदि भारत अपनी पुरातन सांस्कृतिक परंपरा जो सारे देश में एक जैसी है, आपके माध्यम से भारत की संस्कृति के वो मूल सूत्र जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पर जुड़े हुए थे, जो शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय पर जुड़े थे, हमारी फिल्मों के माध्यम से मार धाड़ का रूप थोड़ा सा हल्का करके लोगों में एकता, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा, और हम एक दूसरे के काम आ सकें और राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ एक एक मेरे देश का व्यक्ति आगे बढ़े, मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं
कि आज

0: जो युवा पीढ़ी के लोग मंच पर आए, भारत की सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने जिनको आज बड़े गर्व के साथ सम्मानित किया है। इस दिशा में यदि हम आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित कर पाए, निर्व्यसनी कर पाए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से सोचने का पैदा कर पाए, ये फिल्म जगत के माध्यम से, क्योंकि वो लोगों के दिलों में उतरती है। सहज भाव से आप कठिन विषय को सरल बनाकर लोगों तक पहुंचा पाते हैं। मैं पुनः आप सब गुजरात की इस पावन धरा पर आए आपका अभिनंदन करते हुए आपके सुमंगल भविष्य की कामना करता हूं और सबको पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी के संबोधन को, और इसके बाद कार्यक्रम फिर से पुरस्कार वितरण की ओर बढ़ चला है। माननीय राष्ट्रपति जी अन्य डिग्निटरीज के साथ पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर पधार गई हैं। क्रम चल रहा है संगीत और गायन के पुरस्कार का। अब समारोह में संगीत का रंग घुल गया है। सिनेमा की कहानी आंखों से शुरू होती है लेकिन अक्सर दिल तक पहुंचती है संगीत के रास्ते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला है वैकोम विजय लक्ष्मी को फिल्म एआरएम के लिए, जो मलयालम फिल्म है, और गीत है अंगुवाना कोनिलु।
2: वैकोम विजय लक्ष्मी अर्न्स रजत कमल फॉर कमांडिंग पिच परफेक्ट वोकल डिलीवरी ऑफ अंगुवाना कोनिलु। Her unique vocal timbre adds mythic scale and emotional depth to a period fantasy adventure. Her performance stands out as a high point in film music. Next in line is Best Child Artist, Onko Kikothing in Bengali. Child Artist, Miss Geeta Shri Chakravarti receives the award.
1: Shrotao, category hai Sarvashrestha Bal Kalakar ki, aur aapko bata de, ये नई पीढ़ी मंच पर खूबसूरत दिखाई दे रही है।

0: में दो पिक्चरों के लिए बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है। टोटल 5 बच्चों को इसमें पुरस्कार मिल रहा है, जिसमें अंकों की कोथोन यानी क्या गणित कठिन है के लिए जो बंगाली फिल्म है उसके लिए 3 बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है। सबसे पहले आ रही हैं गीताश्री चक्रवर्ती, जो अपना पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं।
1: यंग गीताश्री चक्रवर्ती रिसीव्स रजत कमल फॉर अ हार्ट वार्मिंग कंप्लीटली नेचुरल परफॉर्मेंस। शी पोर्ट्रेज अ स्कूल चाइल्ड डीलिंग विद क्लासरूम प्रेशर्स एंड चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी विद इनोसेंस। हर स्क्रीन प्रेजेंस ब्रिंग्स जेन्युइन चार्म टू द बंगाली फीचर। नेक्स्ट इन लाइन इज द चाइल्ड आर्टिस्ट Tapamoy Dev. Tapamoy Dev shares top child artist honors for his expressive and witty performance. His comic timing and uninhibited acting bring light-hearted energy to child education themes. The jury praised his effortless comfort in front of the camera. And third in line, best child artist, Anko Ki Kathin in Bengali, is Sri Riddhiman Banerjee.
0: Shrotao, 35 चिन्ना कथा काडू तेलुगु फिल्म के लिए अरुण देव पोथुला को भी मिल रहा है रजत कमल का सम्मान, और मूवी मिथ्या यानी कन्नड़ मूवी मिथ्या के लिए अतीश एस शेट्टी को भी मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। आज इन छोटे कलाकारों की आंखों में जो चमक है, शायद वही कल भारतीय सिनेमा की पहली किरण बनेगी।
1: Shri Arun Dev Pothula wins the Rajat Kamal for portraying a young boy struggling with school mathematics. His performance captures frustration, innocence and determination with absolute sincerity. He anchors the film's narrative heart alongside veteran actors. And next in line is the child artist Shri Atish S. Shetty. He is receiving the Best Child Artist Award for the Kannada film Mithya. Atish S. Shetty earns national acclaim for his hauntingly quiet portrayal of an 11-year-old orphan. Handling grief, confusion and subtle acceptance without dramatic melodrama, his eyes carry the film's emotional weight. His performance is a masterclass in child acting. Next in line is the best actress in a supporting role. Kannada film Mithya, supporting actress Miss Rupa Shri Varakadi receives the Rajat Kamal.
0: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार 2 अभिनेत्रियों को मिला है। कन्नड़ा फिल्म मिथ्या के लिए रूपश्री वरकाड़ी को मिलता है रजत कमल का सम्मान, और दूसरी फिल्म तमिल महाराजा के लिए सचना नामिदास को भी मिलता है रजत कमल का सम्मान। श्रोताओं, 2 अलग भाषाएं, 2 अलग फिल्में, लेकिन सम्मान का मंच एक, यही भारतीय सिनेमा की असली तस्वीर है।
1: Both the supporting actresses, Miss Rupashri Varkadi and Miss Sanchana Namidas, have brought glitters to regional cinema for their supporting role in the films Mithya and Maharaja in Kannada and Tamil language respectively. Next, best actor in supporting role would be for the film Bhakshak in Hindi. Supporting actor, one and only, Shri Sanjay Mishra.
0: श्रोताओं, अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का, जो मिल रहा है संजय मिश्रा को। अब मंच पर एक ऐसा अभिनेता जिनके चेहरे को देखते ही दर्शक अनेक यादगार चरित्रों को याद कर लेते हैं। भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता संजय मिश्रा। संजय मिश्रा का सिनेमा सफर हमें बताता है कि अभिनेता की महानता केवल मुख्य भूमिका में नहीं होती, कभी कभी कुछ मिनट का चरित्र भी पूरी फिल्म की स्मृति बन जाता है, और आज उस अभिनय को राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है रजत कमल का सम्मान।
1: Sanjay Mishra's performance as a weary yet courageous ground reporter brings quiet dignity, humor and moral resolve to an investigative journalism drama. His character serves as the conscience of hard-hitting story, and the next in line is the best actress in a leading role award goes to Yami Gautam Dar for the film Article 370 in Hindi. Yami Dar wins the prestigious Best Actress Award for her intense portrayal of intelligence officer Zuni Haksar. She leads a political thriller with sharp authority, physical discipline and emotional restraint.
0: जी हाँ श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी यामी गौतम एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अलग अलग तरह के किरदारों से अपनी पहचान बनाई। विकी डोनर से शुरुआत, फिर काबिल

0: द सर्जिकल स्ट्राइक बाला ओएमजी 2 अ थर्सडे और अब आर्टिकल 370.
1: Next in the category is the best actor in a leading role. Now the dais is shared by two great champions of acting. First comes for the movie Chandu Champion in Hindi, actor Shri Karthik Aryan. He earns a historic shared award with the one and only Shri Mammootty for the film Brahmayugam in Malayalam.
0: Shrotao, मंच पर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन जिन्होंने प्यार का पंचनामा से लोकप्रियता पाई. सोनू के टीटू की स्वीटी से मजबूत पहचान, भूल भुलैया 2 से बड़ी व्यावसायिक सफलता और अब चंदू चैंपियन में एक बिल्कुल अलग चुनौतीपूर्ण भूमिका. इसके बाद मिल रहा है मम्मूटी को बेस्ट एक्टर का सम्मान.
1: Screen legend Mammootty shares the best actor honor for his chilling performance as Koduman Potti. Operating in a monochrome folk horror setting, his vocal modulation, posture and sinister charm deliver an acting masterclass. It stands as another crown jewel in his multi-decade career. Next in line is the best direction award for the Tamil film Amaran. Director Shri Rajkumar Periaswamy receives the Swarna Kamal.
0: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजकुमार पेरियासामी को मिल रहा है स्वर्ण कमल का सम्मान. अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन राजकुमार पेरियासामी. यह फिल्म भारतीय सेना के जांबाज शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन के जीवन और उनकी वीरता पर आधारित है.
1: राजकुमार पेरियासामी इन द फिल्म अमरन, हिज डायरेक्टोरियल विजन ऑनर्स रियल लाइफ हीरोज विद एस्थेटिक ब्रिलियंस एंड डिग्निटी. He balances authentic tactical military action with tender personal storytelling. Next is the category of best children's film. 35 Chinna Kathakodu, Telugu film, producer S Originals and Walter Productions, represented by Shri Shrujan Yarabolu.
0: जी हाँ श्रोताओं, बच्चों की दुनिया, उनकी जिज्ञासा, उनके सवाल और उनकी नजर से समाज को देखने का प्रयास, सिनेमा की यही खूबसूरती है. वह हर उम्र के बच्चों से, लोगों से संवाद कर सकता है. सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू को मिल रहा है रजत कमल, नहीं स्वर्ण कमल का सम्मान.
1: इस फिल्म को दोनों कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है. द फिल्म इज रिसीविंग अवार्ड्स इन बोथ द कैटेगरीज फॉर प्रोड्यूसर एज ऑल्सो द डायरेक्टर. बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म 35 चिन्ना कथाकोडू, प्रोड्यूसर एस ओरिजिनल्स एंड वॉल्टर प्रोडक्शन, फॉलोड बाई डायरेक्टर श्री नंद किशोर इमानी. डायरेक्टर नंद किशोर इमानी शेयर्स द स्वर्ण कमल फॉर डायरेक्टिंग एन एंगेजिंग नैरेटिव अबाउट ओवरकमिंग लर्निंग फियर्स. हिज लाइट हार्टेड डायरेक्शन ट्रीट्स चिल्ड्रन विद डिग्निटी व्हाइल डिलीवरिंग अ वाइटल मैसेज ऑन एम्पैथी इन एजुकेशन. The next is the category of best feature film promoting social values and the film is Captain Miller in Tamil. Producer Satyajyoti Films, represented by Shri Thyagrajan T.G. comes on to receive the Rajat Kamal.
0: जी हाँ श्रोताओं, राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म अब पुरस्कार मिल रहा है तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को. तमिल सिनेमा की इस फिल्म के निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन. इन्हें मिल रहा है रजत कमल का सम्मान. मंच पर सम्मान ग्रहण किया जा रहा है.
1: प्रोड्यूसर त्यागराजन एक्सेप्ट्स रजत कमल फॉर हिज स्केल एपिक टैकलिंग ऑपरेशन कास्ट बैरियर्स एंड फ्रीडम स्ट्रगल स्टोरी. नेक्स्ट इन कैटेगरी इज द बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग सोशल वैल्यूज. कैप्टन मिलर इन द फिल्म इन तमिल रिसीव्स द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड. श्री अरुण मथेश्वरन कम्स ऑन स्टेज. He wins for crafting an uncompromising historical revolution drama. His staging blends cinematic scale with strong socio-political commentary against systemic oppression. His direction delivers visceral excitement alongside meaningful themes.
0: श्रोताओं, अब बारी है लोकप्रिय एवं संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, जो गया है तेलुगु फिल्म कल की 2898 AD को. बारी है उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा के भविष्य और हमारी पौराणिक कल्पनाओं को एक विशाल सिनेमाई संसार से जोड़ने का प्रयास किया. सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है कल की 2898 AD, जिनके निर्देशक हैं नाग अश्विन सिंह रेड्डी, इन्हें जाता है स्वर्ण कमल का पुरस्कार.
1: The wholesome entertainer Kalki 28

0: மியூசிக்கல் மாஸ்டர் பீஸ் ஹம் சகிதி, பி லங்கேஷ் பல்லவி அண்ட் த சினிமேட்டிக் அடாப்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஞான்பீத் லாரியட் டாக்டர் சிவராம் கரான் டு ரீடிஃபைனிங் மிடில் கிளாஸ் காமெடி வித் அன்பர்கெட்டபிள் வார்ம் இன் ஃபில்ம்ஸ் லைக் கணேஷ்னா மதுவே, கௌரி கணேஷா அண்ட் பெலண்டிகல பாலே. ஹிஸ் வர்சட்டிலிட்டி ஹஸ் நெவர் பீன் மேட்ச்ட். In modern contemporary cinema, his dignified patriarchal presence in KGF Chapter 1 and Rishabh Shetty's Sarkari Hi Prashale continues to captivate young generations. And here's actor Anant Nag, who has come along with his wife Gayatri, who is now walking to the screen to receive the award from Honorable President Madam. The award honors a true titan of Indian cinema. The entire auditorium at Ekta Nagar stands in ovation as legendary actor Shri Anant Nag is walking towards the stage receiving the Dadasaheb Phalke Award. There is a brief film for 5 minutes shown about Anant Nag, which is being displayed on the screen right now. As his various characters are being portrayed on the screen, we go through the history, reminiscing those times of Malgudi days and the film Kaliyug, where he portrayed an aristocratic businessman or a loving male character with Simi Garewal. He has received Karnataka State Best Actor Award, Filmfare Awards, and Karnataka Rajyotsava Award, Karnataka Sahitya Academy Award, Karnataka State Lifetime Achievement Award, and now is the time for him to achieve the Dadasaheb Phalke Award. He walks to the screen and receives the award from the president as the hall is coming up in thunderous applause. His various characters are being depicted on screen. Let's now go on to the actual stage to listen from him.
1: यूनिवर्सिटी ने सिनेमा में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें ऑनररी डॉक्टोरेट की उपाधि से सम्मानित किया। केवल कला में ही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये 1988 से 1994 तक कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे तथा 1994 से 1999 तक ये न केवल कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रहे बल्कि इस दौरान कर्नाटक के मंत्रिमंडल में बतौर बेंगलुरु विकास मंत्री कार्य भी किया। चाहे मेनस्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा हो या न्यू वेव सिनेमा, दोनों ही क्षेत्रों में कार्य कर इन्होंने अपनी अभिनय परिपक्वता का प्रमाण दिया। आज भारत सरकार भारतीय सिनेमा में इनके अप्रतिम योगदान के लिए इन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कर रही है।
2: Best Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, to confer Dada Saheb Phalke Award for the year 2024 upon Sri Anant Nag. And I now invite Sri Anant Nag to come forward and receive the highest and the most distinguished recognition in Indian cinema. Let's put our hands together as we give a standing ovation to Sri Anant Nag ji, for the artist who is recognized for more than 5 decades of natural performances, from landmark parallel cinema classics to beloved Kannada comedies and nuanced later roles. Sri Anant Nag has enriched Indian cinema with rare versatility, grace and humanity. Ladies and gentlemen, Sri Anant Nag getting Dada Saheb Phalke Award for the year 2024.
3: Kartal Dhwani ke saath Abhinandan Bharatiya Cinema ke atyant sammanit aur lokpriya kalakar ka, jinhone vibhinn bhashaon mein apni vishisht kala sadhana se desh ki vividh cinemai paramparaon ko samriddh kiya, jinki saadgi mein garima, sahajta mein prabhav aur pratyek bhav abhivyakti mein asadharan gehrai dikhai deti hai. अपने बहुआयामी प्रतिभा और स्मरणीय प्रस्तुतियों से भारतीय सिनेमा की विरासत को गौरवान्वित करने वाले श्री अनंत नाग जी.
2: Shaped by the stage and fluent across languages as we learned, Sri Anant Nag moved effortlessly between art house and mainstream cinema, bringing wit, warmth and quiet depth to every character he played.
3: और अब मैं हमारे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें.
2: एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड गुड विशेस टू यू श्री अनंत नाग सर फॉर द ऑनर. वी आर ऑल ईगर टू हियर फ्रॉम यू. वुड यू काइंडली कम एंड शेयर योर थॉट्स विद अस.

0: परम सम्माननीय श्री अनंतनाथ जी, आपके आत्मीय उद्गारों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर आपको पुनः हार्दिक बधाई। भारतीय सिनेमा में आपका अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। कर्तव्य ध्वनि से आइए एक बार पुनः करें श्री अनंतनाग जी का हृदय से अभिनंदन। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सविनय अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति जी,
1: बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मेलन में उपस्थित गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, विभागीय सचिव श्री चंचल कुमार जी, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण तथा सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजन, सभी को मेरी नमस्कार। मुझे पुरस्कार विजेताओं से बहुत बहुत मैं उनको बधाई देती हूँ। विशेष प्रतिभा और कठिन परिश्रम के बल पर आपने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत सराहना करती हूँ। एक फिल्म को बनाने में बहुत से लोगों का योगदान होता है। आप सभी पुरस्कार विजेताओं से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि अपनी टीम के उन सभी सदस्यों तक भी मेरी सराहना अवश्य पहुंचाएं, जिनके योगदान से आपकी पुरस्कृत फिल्म का निर्माण संभव हुआ। मैं अनंतनाग को भारतीय फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पिछले वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला। बहुत छोटी उम्र से ही और रंगमंच के प्रख्यात लोगों के साथ जुड़ गए थे। आपने पहले नाटक में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख भूमिका निभाई और दूसरी नाटक में गौतम बुद्ध की। फिल्म में उनका अभिनय थिएटर और सिनेमा के श्रेष्ठ आयामों का समन्वय प्रस्तुत करता है। फिल्मों का गंभीर अध्ययन करने वाले लोग मानते हैं कि उनका अभिनय सहज यानी नेचुरल, संयत यानी रिस्ट्रेंड और प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक होता है और कलाकारों को भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। देवियों और स्वजन, यहाँ एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन करने के लिए मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को तथा उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में हम भारत को के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। 550 से अधिक रियासतों का विलय करके सरदार पटेल ने स्वाधीन भारत की एकता का

समीचित सुनिश्चित किया था। एकता नगर का ये क्षेत्र भी एक रियासत का हिस्सा था, विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र और आकार देने वाले सरदार पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ शोभायमान है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अद्भुत परिकल्पना को जाता है। आज पुरस्कृत फिल्मों में स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक भी शामिल है। देवियों और स्वजन, आज पुरस्कृत फिल्मों का एक संक्षिप्त विवरण मुझे दिया गया है। इन फिल्मों के बारे में जानकर मैं आप सबके योगदान से बहुत प्रभावित हुई हूँ। मैं आप सबकी बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रीय एकता के एक विशेष अध्याय को उजागर करने वाली फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ये फिल्म देश की एकता से जुड़ी गंभीर चुनौतियों और उनके समाधान का जीवंत विवरण प्रस्तुत करती है। इस फिल्म की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सुश्री यामी गौतम धौर की मैं विशेष सराहना करती हूँ। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म भोंगार जीवन और मृत्यु सार्थकता और निरर्थकता के जुड़े अनदेखा आयामों में अभिव्यक्ति करती है। ऐसे असाधारण विषय पर हृदयस्पर्शी फिल्म बनाने के लिए मैं निर्माता निर्देशक सुश्री समीरा राय और उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। चौथी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री मम्मूटी को मैं विशेष बधाई देती हूँ। इसी वर्ष उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत करने का अवसर मुझे मिला था। देवियों स्वजनों, वर्ष 1970 में वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर भारत के इस महान सपूतों की स्मृति ने एक डाक टिकट जारी किया था। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हवाई अड्डे को वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। आज पुरस्कृत फिल्मों में शामिल स्वातंत्र्य वीर सावरकर उनकी असाधारण जीवन गाथा के प्रति एक कलात्मक श्रद्धांजलि है। इस फिल्म के निर्देशक नॉन के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री रणदीप हुड्डा को मैं बधाई देती हूँ। कुछ लोगों की जीवन गाथा बहुत प्रेरक होती है। मैं मानती हूँ कि ऐसे प्रेरक व्यक्तियों पर बायोपिक बनाना बहुत सराहनीय कार्य है। बचपन से खेल जगत के प्रसिद्ध होने का सपना देखने वाले भारतीय सैनिक श्री मुरलीकांत पटकार 1965 के भारत पाक युद्धों के दौरान घायल हो गए। गंभीर चुनौतियों के बावजूद अपने साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर वर्ष 1972 में वे पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने थे। वर्ष 2018 में श्री पटकर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके चरित्र को अपने अभिनय से जीवंत बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री कार्तिक आर्यन को मैं बधाई देती हूँ। भक्षक नामक फिल्म महिला सुरक्षा के अत्यंत गंभीर विषय पर समाज को जागरूक करती है। बेटियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के प्रति समाज को कृतज्ञ रहना चाहिए। इस विषय की संवेदनशील अभिव्यक्ति के लिए फिल्म की पूरी टीम को मैं विशेष साधुवाद करती हूँ। संताली फिल्म आंगेन के राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने से एक उत्कृष्ट फिल्म को तो प्रोत्साहित मिल ही रहा है, साथ ही साथ सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिला है। इस फिल्म के निर्देशन के लिए पुरस्कृत श्री रविराज मुर्मू को मैं बधाई देती हूँ। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म को पुरस्कृत करना तथा बाल कलाकारों को पुरस्कार देना देश के भविष्य में कलात्मक निवेश है।

0: इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल कलाकारों आतिश शेट्टी, अरुण देव पथुला, रिद्धियान बनर्जी, तपोमय देव एवं गीताश्री चक्रवर्ती को मैं बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देती हूँ। आज पुरस्कृत सभी फिल्में उल्लेखनीय है, परंतु समय की सीमा के कारण मैं कुछ फिल्मों का ही उल्लेख कर पाई हूँ। मैं एक बार फिर सभी पुरस्कृत फिल्मों से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समाज और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्मों का चयन करने के लिए मैं जूरी के सदस्यों की सराहना करती हूँ। मैं चाहूँगी कि प्रत्येक रीजनल जूरी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे आज जितने कलाकार पुरस्कृत किया गया है कलाकारों को, उनमें से बहुत सारे महिलाएं हैं, इसलिए जूरी भी महिलाएं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने हैं करके ही समग्र मानवीय दृष्टि का निर्माण संभव होता है। देवियों और स्वजनों, आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले। मैंने पिछले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में ये अनुरोध किया था कि पूरी टीम के सभी सदस्यों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का भाव रखना फिल्म उद्योग के वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सब मेरे इन अनुरोधों पर ध्यान देते होंगे। देवी और स्वजनों, जो फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं, तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि लोकप्रिय कलाकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का एंडोर्समेंट ना करें। स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, अंधेरा नहीं। देश में बन रहे अच्छे फिल्मों के बारे में जानकर मेरा ये विश्वास और दृढ़ता है कि हमारी फिल्में गुणवत्ता यानी क्वालिटी के विश्व स्तरीय प्रतिमान बनाएगी। मैं आप सबके और फिल्म उद्योग के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: थैंक यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट। लेट अस ऑल राइज फॉर द नेशनल सॉन्ग एंड द नेशनल एंथम।

0: हमने कलाकारों के चेहरों पर उपलब्धि की मुस्कान देखी और हमारे कानों में अब भी कुछ देर पहले गूंजती तालियों की आवाज है। आज हमने यहाँ पुरस्कारों का वितरण ही नहीं देखा, हमने सपनों को सम्मानित होते देखा, हमने मेहनत को मंच पर आते देखा, हमने भारत की अनेक भाषाओं को एक साथ तालियां बजाते देखा और शायद इसी को भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत तस्वीर कहा जा सकता है। अब मैं नीलम थपलियाल अपने साथी अंग्रेजी समीक्षक शैलेंद्र सिंह जाडेजा एवं आकाशवाणी वडोदरा और अहमदाबाद की पूरी टीम के साथ आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं।
1: अभी आप एकता नगर केवड़िया गुजरात से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम थपलियाल हिंदी में और शैलेंद्र सिंह जडेजा अंग्रेजी में।
2: You are listening to the live broadcast of the 72nd National Film Awards Ceremony, organized in the gracious presence of the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, at Ekta Nagar, Kevadia, Gujarat. Our commentators were Nilan Thapliyal in Hindi and Shailendra Singh Jadeja in English. Originated by Akashvani Vadodara, Gujarat, this broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
3: நேயர்கள், இதுவரை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்கள் குஜராத் மாநிலம் ஏக்தா நகரில் நடைபெற்ற 72வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளை வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு வழங்கும் நிகழ்வின் நேரடி ஒளிபரப்பினை டெல்லியிலிருந்து அன்று செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त हैं अभिनव पुंशी और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं शाम के 6:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट. और आज की दोस्तों सबसे बड़ी खबर जो है वो यही रहेगी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भारत को एशियन गेम्स के अंदर इस वर्ष उसका पहला स्वर्ण पदक दिला दिया है. जी हाँ, द गोल्ड मेडल हैज फाइनली कम टू इंडिया थ्रू द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम हु वेंट ऑन टू डिफीट श्रीलंका टुडे बाय अ ह्यूज मार्जिन ऑफ 147 रन्स. इंडिया हु वन द टॉस पहले वो चोज टू बैट फर्स्ट एंड बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने आज 216 रन बनाए उनके निर्धारित 20 ओवरों में, जिसको श्रीलंका जब चेस करने आया तो उनकी पूरी टीम सिमट गई सिर्फ 69 runs me, and this goes to show that this has also been one of the biggest defeats that India has churned out to an opposition when it comes to the margin of runs jisse aaj Bharat ne Sri Lanka ko haraya hai. Abhinav, a very proud moment for every Indian.
1: It's a glorious moment और बहुत ही गर्व है हम सब भारतीयों को. आज हमारी इंडियन वुमेन्स टीम एशिया कप भी जीता और आज एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, और याद दिलाएं ब्रॉन्ज मेडल गया पाकिस्तान को जिन्होंने हराया बांग्लादेश को. और आज लग रहा है कि थीम है इंडिया को श्रीलंका को हराने का, क्योंकि हॉकी में इंडिया ने श्रीलंका को 16-1 से हराया. इंडियन मेंस टीम आज तो पूरी तरह फायर पे थी, क्योंकि जुगराज के 4 गोल, अभिषेक और दिलप्रीत की हैट्रिक और हरमनप्रीत के 2 गोल की वजह से इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली अपना मैच जीता 16-1. इंडोनेशिया को हराया था 13-1 और अब 16-1, तो लग रहा है हॉकी टीम सीधा करेक्ट पाथ पे जा रही है.
0: इंडीड, हॉकी टीम करेक्ट पाथ पे जा रही है. उनसे ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद भी थी और अच्छा लगता है देखकर कि हमारे हॉकी के खिलाड़ी हमारी आशाओं पर खरा उतर रहे हैं. अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वुशु की दुनिया से भी. आज एक बहुत अच्छी बड़ी ताजी खबर आ रही है, विच इज दैट इन भारत की वुशु स्टार जिसको हम कहते हैं रोशिबिना देवी अशोर्ड हरसेल्फ ऑफ अ थर्ड सक्सेसिव एशियन गेम्स मेडल आफ्टर स्टॉर्मिंग इनटू द वुमेन्स सैंडा 60 किलोग्राम सेमीफाइनल्स विद अ 5-0 विक्ट्री ओवर मकाओ चाइनाज चू मैनसिन आज के दिन. वेल, द सेमीफाइनल बर्थ गारंटीज रोशिबिना एटलीस्ट अ ब्रॉन्ज मेडल इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. और आपको ये बता दें कि रोशिबिना देवी जो हैं वो पहले भी भारत की एक बहुत कहते हैं ना जगमगाता हुआ स्पोर्ट्स का खिलाड़ी रह चुकी है. वो ऐसा सितारा है जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं, बिकॉज ये वही शख्सियत है, ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल भी दिलवाया हुआ है 2018 में और सिल्वर मेडल भी दिलवाया हुआ है 2023 में. और उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष उनका सफर एक पायदान ऊपर ही जाए अभिनव, एंड शी गोज ऑन टू गेट द गोल्ड फॉर अस ऑल्सो फॉर आर कंट्री.
1: Of course, Roshabina Devi making India proud. Unfortunately, Aryan, जिन्होंने कोशिश करी थी अपने क्वार्टर फाइनल मैच में, वो अपना मैच हारे 2-1, नहीं तो वो भी प्रवेश करते सेमीफाइनल्स में. गारंटीड होता इंडिया को एक ब्रॉन्ज, गारंटी तो इंडिया को ब्रॉन्ज होता अगर इंडियन विमेंस टीम हरा पाती टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल टीम्स इवेंट में नॉर्थ कोरिया को, मगर वो नहीं हो पाया. 3 सिंगल्स मैचेस हुए, 3-0 में क्लीन स्वीप करा नॉर्थ कोरिया ने. चीजाकुला, यशरवीन घोरपड़े और दिया छतेले तीनों को हार का सामना कर रहा. मेंस टीम की भी याद दिलाएं, आज सुबह प्री क्वार्टर फाइनल्स में साउथ कोरिया से हारे 3-0. सो अ डिसअपॉइंटिंग डे इन टेबल टेनिस.
0: Right, and somehow that disappointment also seeped into the world of gymnastics, because gymnastics में अगर हम कहें तो a slight correction over there, did not seep into the world of gymnastics. Ulta, gymnastics ki taraf se ek choti si khushkhabri aapko deti hu filhal ke liye, which is that Praniti Nayak qualified for the world finals in artistic gymnastics with the score of 12.916. Ji haan, Praniti Nayak jo Bharat ki taraf se representation rakh rahi hai gymnastics ki duniya mein, ab dekhna hoga kyunki unko final mein apni jagah wo bana chuki hai ki wahan se kya वो इस सफर को एक कदम और आगे ले जाती है और भारत को मेडल दिला के लाती है, ये तो आगे ही पता चलेगा. लेकिन अभी के लिए खुशखबरी यही है कि प्रणति नायक भी क्वालिफाई कर चुकी है वॉल्ट फाइनल्स के अंदर आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स में विद अ स्कोर ऑफ 12.916. अभिनव,
1: और अगर हम कल की बात करें तो एशियन गेम्स में और गोल्ड मेडल्स की बरसात हो सकती है भारत के लिए, क्योंकि 6:15 बजे एक्शन में होंगी मनु भाकर और आईएस रुचि एंड ईशा सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन्स टीम एंड इंडिविजुअल इवेंट. एंड उसके बाद हमारे पास एक और गोल्ड का मौका है, क्योंकि 10 बजे आने वाली हैं मीराबाई चानू एंड साक्षी, आई एम श्योर यू आर वेरी एक्साइटेड टू सी मीराबाई चानू गेट हर एशियन गेम्स मेडल व्हिच शी इज डेस्परेट फॉर.
0: Yes, I am. I'm definitely looking forward to that. And the good thing is that I should hopefully be covering that. And we'll be looking forward to the medals going up tomorrow. Lekin abhi ke liye filhal, hamare paas 6:30 baje shaam ke updates mein itni hi aapke liye khabar thi.

0: शाम को 7:30 बजे एक घंटे बाद फिर आपसे एक बार आकाशवाणी के माध्यम से जुड़ेंगे और लेके आएंगे आपके लिए दिन का रैप अप और ऑल्सो ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड द प्रीव्यू फॉर टुमारोज इवेंट्स. गुड बाय फॉर नाउ.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

0: 26 updates.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: वेलकम टू द एशियन गेम्स अपडेट फ्रॉम आईची नगोया एंड माय नेम इज अभिनव पुंछी एंड ऑफ कोर्स टुडे इज अ गोल्ड मेडल डे बिकॉज इंडिया हैज फाइनली स्ट्रक गोल्ड थैंक्स टू द इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम. They played outstandingly well against Sri Lanka in the final. और क्या धमाकेदार बैटिंग करी थी, 216 रन बनाए. स्मृति मंदना टॉप स्कोरिंग विद 79 रन्स. उसके जवाब में श्रीलंका वर ऑल आउट एंड फॉर जस्ट अ वेरी वेरी एवरेज स्कोर ऑफ 69 और इंडिया को जीत मिली 147 रन से. शानदार जीत और हमारी इंडियन वुमेन्स टीम ने अपना टाइटल डिफेंड करा है और गोल्ड मिला है इंडिया को. और इस गोल्ड की वजह से इंडिया जो 18वें पोजीशन में थे अब 8वीं पोजीशन में जा चुकी है मेडल्स टैली.

0: में विद वन गोल्ड एंड ऑफ कोर्स टोटल ऑफ सेवन मेडल्स एज वेल, फोर सिल्वर्स एंड टू ब्रॉन्ज. Also, good news coming for India from the badminton circuit. A stunning victory, 3-0 versus Japan in the men's team competition. Ab India ne pravesh kare semi-finals mein. Aur semi-finals mein agar ab jate hain men's team badminton mein, to you are guaranteed a bronze medal. And semi-finals mein pravesh Roshibina Devi ne bhi kara hai Wushu Sando mein. उन्होंने अपना क्वार्टर फाइनल मैच जीता विद पॉइंट्स डिफरेंस और अब वो भी गारंटी है ब्रॉन्ज. याद दिलाएं, रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल जीता था हैंगझो एशियन गेम्स में और 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. तो अगर कल की बात करी जाए तो इट्स गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर डे, क्योंकि सुबह 5:30 बजे ही जय मीना का सॉफ्ट टेनिस का क्वार्टर फाइनल मैच है. और अगर जय मीना प्रवेश करते सेमीफाइनल्स में, ही इज गारंटीड अ ब्रॉन्ज मेडल. एंड देन उसके बाद शूटिंग में सबको इंतजार था. एवरीबडी इज बीन वेटिंग फॉर मनु भाकर एंड हर शूटिंग बडीज टू कम एंड टेक टू द शूटिंग रेंज, क्योंकि मनु भाकर, ईशा सिंह और आईएस सुरुचि विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन्स टीम और इंडिविजुअल इवेंट में है. उसके बाद शूटिंग के स्कीट का भी थर्ड एंड फाइनल डे है, मेन्स एंड विमेन्स इंडिविजुअल एंड टीम इवेंट्स. And then we have the big one, 10 a.m. Meerabai Chanu, she wants gold. Kabhi Asian Games mein unhone nahi jeeta hai medal aur unko chahiye weightlifting ke 49 kg mein ek medal. And of course, humne baat ki thi kuch der pehle badminton ke bare mein aur 11:30 baje hoga India versus China. Ji haan, ये वो ही मैच है जो फाइनल था पिछली बारी और इंडिया हारी थी वो फाइनल. सिल्वर मेडल मिला था इंडिया को, मगर इस बारी इंडिया क्या चाइना को हरा पाएगी, क्या फाइनल में प्रवेश कर पाएगी, क्योंकि सामना उनका अगर जीतेंगी सेमीफाइनल करेगी इंडोनेशिया या थाईलैंड. ऑल्सो आपको याद दिलाएं कल कबड्डी एक्शन भी है, इंडिया वर्सेज ईरान एट 8:30 AM, 9:45 AM इंडिया वर्सेज बांग्लादेश मेन्स कबड्डी. एंड एक और बड़ा गोल्ड मेडल मैच है, अगर आप सुबह उठेंगे तो प्लीज 6:30 बजे इक्वेस्ट्रियन इवेंटिंग टीम को प्लीज चेयर करना, बिकॉज उनके पास मौका है गोल्ड लाने का. और आज मेंस हॉकी टीम ने तो श्रीलंका की धुनाई कर दी. जी हाँ, 16-1 का स्कोर था आफ्टर बीटिंग इंडोनेशिया द फर्स्ट मैच 13-1. द मेंस हॉकी टीम वेंट बेटर एंड बीट श्रीलंका 16-1. जी, आज का थीम ऑफ द डे है श्रीलंका को हराना. विमेन्स क्रिकेट टीम ने करा और मेन्स हॉकी टीम ने भी करा. तो कल क्या इंडियन विमेन्स टीम थाईलैंड को हरा पाएंगी, 11:30 AM होगा इंडिया और थाईलैंड का वो हॉकी मैच. एंड हमने आपको मीराबाई चानू के बारे में तो बताया ही, वेट लिफ्टिंग में ऑल्सो ज्ञानेश्वरी यादव इज इन एक्शन इन द विमेन्स 53 kg बाउट, दैट्स एट 11:30 AM. सो इट्स एन एक्शन पैक डे फॉर इंडिया एंड दे'ल बी होपिंग दैट सम मोर मेडल्स कम इंडियाज वे टुमारो, बिकॉज टुडे वी हैव स्ट्रक गोल्ड. और आईची नगोया से एशियन गेम्स में अब इंडिया आगे बढ़ा है एंड होपफुली दे कीप ऑन गोइंग द राइट डे. ऑफ कोर्स देयर वर डिसअपॉइंटमेंट्स, टेबल टेनिस टीम्स, इंडियन विमेन्स टीम क्वार्टर फाइनल्स में हारे नॉर्थ कोरिया के साथ खिलाफ एंड प्री क्वार्टर फाइनल में इंडियन मेंस टीम को हारना पड़ा साउथ कोरिया के खिलाफ. सो दैट वॉज डिसअपॉइंटिंग फॉर द टेबल टेनिस कंटेंजेंट. द दे'ल बी होपिंग दैट टुमारो द इंडियन कंटेंजेंट पुट्स ऑन अ फैंटास्टिक शो एंड डज वेल, क्योंकि आज एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है हमारी क्रिकेट टीम ने दी है. ऑफकोर्स याद दिलाई, बॉक्सिंग से भी गुड न्यूज आई थी, जादूमणि सिंह ने हराया था चंद्र बहादुर थापा को, वो एडवांस कर चुके हैं राउंड ऑफ 16 में. सो गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम बॉक्सिंग विद जादूमणि सिंह ऑफकोर्स, एंड वी आर होपिंग मच मोर बेटर न्यूज. वील बी बैक विद इट टुमारो एज वेल. और याद दिलाएं, 10 बजे आपको सारा डिटेल रिपोर्ट्स आएंगे आज जो एशियन गेम्स में हुआ. सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन फॉर दैट. दैट्स ऑल फ्रॉम मी, अभिनव पुंछी. इट्स बीन अ फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया, होपिंग फॉर मच मोर डेज लाइक दिस अहेड. एंड दैट्स ऑल, कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग टू आकाशवाणी फॉर मोर अपडेट्स.
1: एशियन गेम्स 2026, आईची नगोया.
2: You are listening to the Asian Games 2026 update. This is FM Rainbow 102.6 MHz.
3: FM Rainbow 102.8 இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
4: நேரம் 7:35 நொடிகள் ஆயிட்டு இருக்கு. எஃப்எம் ரெயின்போ பொது 102.8 நேயர்கள் மனம் விட்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி மனம் விரும்புதே வித் மீ ஆர் ஜே மேக்ஸ். இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு பிடிச்ச விருப்ப பாடலை என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் கேட்கலாம். அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் மொபைல் ஃபோன் எடுங்க, 2271760 மற்றும் 2271770 நம்பருக்கு டயல் பண்ணுங்கள். வெளியூர் நேரத்தில் இருந்தீங்கன்னா 0413 அப்படின்ற நம்பரை முன்னிட்டு டயல் பண்ணுங்கள்.

0: 217 का टारगेट दिया। श्रीलंकाई पारी शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगी। बल्ले से अपने जोहर दिखाने के बाद शैफ अली ने गेंद से भी दो विकेट लेने में योगदान दिया। अंततः भारत ने 147 रन के बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीता।
1: मेंस कबड्डी के ग्रुप ए मुकाबले में इंडिया ने अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखते हुए दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। डिफेंडिंग चैंपियंस ने पूरे मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी और ग्रुप ए में अपनी स्थिति मजबूत की। इंडिया ने शुरुआत से ही अटैक और डिफेंस दोनों में दबाव बनाया। हाफ टाइम तक इंडिया 34-14 से आगे था और उसने दो बार प्रतिद्वंदी को ऑल आउट किया। दूसरे हाफ में भी अर्जुन देशवाल, देवांग अयान, राहुल और पवन कुमार जैसे रेडर्स ने स्कोरिंग जारी रखी, जबकि जयदीप, सुमित और सुनील कुमार ने डिफेंस में इंडिया की पकड़ बनाए रखी। आखिरकार इंडिया ने दूसरे हाफ में 29 पॉइंट जोड़ते हुए मुकाबला 63-31 से अपने नाम किया। पूरे मैच में इंडिया ने 3 ऑल आउट, 17 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल पॉइंट्स हासिल किए। दक्षिण कोरिया की तरफ से कैप्टन ली जांगकुन ने सुपर 10 जरूर दर्ज किया, लेकिन इंडियन टीम की लगातार अटैकिंग और डिफेंसिव प्रेशर के सामने कोरिया वापसी नहीं कर सका। इंडिया ने इस तरह ग्रुप ए में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब इंडियन मेंस टीम का अगला मुकाबला 23 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा, जहां टीम जीत की इस लय को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी।
0: हॉकी की भी यही कहानी है। वहाँ गोल्ड मेडल जीतना केवल शक्ति दिखाने और साख के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ घटा आज हॉकी के मैदान पर, आइए सुनते हैं।
1: मेंस हॉकी में इंडिया ने आज अपने अटैकिंग अंदाज का शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 16-1 से करारी शिकस्त दी। इंडिया की हॉकी टीम से इसी तरह के हेवी परफॉर्मेंस की उम्मीद हमेशा रहती है और आज मैदान पर टीम ने उसी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह जस्टिफाई किया। पूल ए में ये इंडिया की लगातार दूसरी जीत है और दो मैचेस में इंडिया अब तक 29 गोल कर चुका है। इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरे हाफ में भी अटैकिंग मोमेंटम बरकरार रहा और इंडिया ने कुल 16 गोल दागे। इस शानदार स्कोरिंग परफॉर्मेंस में जुगराज सिंह ने 4 गोल्स किए, जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने भी 3-3 गोल्स के साथ हैट्रिक्स पूरी करी। और इंडिया के डिफेंसिव स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे मुकाबले में श्रीलंका को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला। यानी इंडिया ने सिर्फ गोल्स के सामने नहीं बल्कि अपने डिफेंस में भी श्रीलंका पर लगातार दबाव बनाए रखा। श्रीलंका के लिए सुरेश रत्नायके ने 50वें मिनट में एकमात्र गोल किया, जो एशियन गेम्स में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका का पहला गोल भी रहा। अब इंडिया का अगला पूल ए मुकाबला 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ होगा।
0: अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग की तरफ, जहां आज चुनौती कड़ी थी। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजों से जो उम्मीदें हैं उनका वजन भी बढ़ गया है, लेकिन दबाव में भी दमखम दिखाते हुए इंडियन बॉक्सर्स ने अपना वर्चस्व कायम रखा। सबसे पहले महिलाओं की 51 किलोग्राम की कैटेगरी, जहां साक्षी चौधरी के सामने थी पेरिस ओलंपिक्स की मेडलिस्ट फिलीपींस की आयरा विलिगास, लेकिन साक्षी ने तो मानो प्रतिद्वंदी को मौका ही नहीं दिया। शुरुआत से ही बाउट को डोमिनेट किया और अंततः सर्वसम्मति से मुकाबला जीत प्री क्वार्टर्स में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट वॉज जादूमणि सिंह इन द मेन्स 55 किलोग्राम कैटेगरी। ही वॉज अप अगेंस्ट नेपाल्स चंद्र बहादुर थापा एंड द सेम स्टोरी रिपीटेड। जादूमणि डोमिनेटेड द फाइट एंड इवेंचुअली वॉज हेल्ड एज द बेटर बॉक्सर ऑन ऑल 5 कार्ड्स। He won his bout by a unanimous decision and made it to the pre-quarterfinals. चलिए अब बात करते हैं नई संभावनाओं की। भारत का एक और मेडल सुनिश्चित हो चुका है वुशु में। वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट्स कुंगफू से उत्पन्न हुआ एक खेल है और इसके सांडा इवेंट में दो फाइटर्स आमने सामने होकर एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते हैं। भारत की रोशबीना देवी ने इस इवेंट में 2018 में कांस्य पदक और 2023 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। 2026 में भी उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश पा कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर लिया है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि सेमीफाइनल जीत वो सिल्वर और हो सके तो गोल्ड पर भी निशाना साधेंगी। इसी इवेंट में पुरुषों की 56 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के आर्यन ने भी उम्मीदें जगाई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में

0: उज्बेकिस्तान के सेडुला अब्दुराशिटोव के खिलाफ उनको हार मिली। वुशू में ही एक परफॉर्मेंस इवेंट भी होता है जिसको नानकुआन कहा जाता है, उसमें आज भारत की लांगलिन टोम्बी देवी शिरकत कर रही थी। हालांकि 10 खिलाड़ियों में उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया और मेडल की रेस से बाहर हो गई। फाइट स्पोर्ट्स की ही बात हो रही है तो जापान में ही उत्पन्न हुआ कराटे कैसे पीछे रह सकता है?
1: जी हाँ, कराटे में इंडिया के लिए आज का दिन मेडल के बेहद करीब पहुंचकर खत्म हुआ। सबसे पहले पुरुष कुमीते 84 किलोग्राम में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। चेतन ने पहले सेमीफाइनल में जॉर्डन के मोहम्मद अल जफारी का सामना किया लेकिन 0-8 से हार गए। इस रिजल्ट के बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह मिली। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया, जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया, जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। लेकिन इसके बाद फैसला सेंशु से हुआ। सेंशु उस एथलीट को मिलता है जिसने ओपोनेंट के स्कोर करने से पहले सबसे पहला अनकंटेस्टेड पॉइंट हासिल किया हो। चुंग ने पहला स्कोर किया था, इसलिए टाई होने पर सेंशु के आधार पर उन्हें विनर घोषित किया गया और चेतन ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। अब महिला कुमीते 55 किलो के कैटेगरी में अलीशा चौधरी को राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया की चौक एस्त्री सानिस त्रयानी से 1-6 से हार मिली। अलीशा ने 1 यूको स्कोर किया जबकि सानिस त्रयानी ने 3 यूको और 1 इपोन के जरिए 6 पॉइंट्स हासिल किए। अलीशा का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 16 में समाप्त हुआ। इस तरह कराटे में इंडिया के दोनों एथलीट्स मेडल कंटेंशन में पहुंचे, लेकिन चेतन भट्ट का बेहद करीबी 1-1 ब्रॉन्ज मेडल बाउट और सेंशु का फैसला आज के मुकाबलों का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा रहा।
0: संघर्ष और सफलता का यह मिला जुला खेल बैडमिंटन कोर्ट पर भी देखने को मिला। क्वार्टर फाइनल में जहां महिलाओं की टीम को हार मिली तो वहीं पुरुषों ने जापान की मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच अपने लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। डिटेल्स बता रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन बैडमिंटन द इंडियन वुमेन्स टीम कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर अ 1-3 लॉस टू जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स। द फर्स्ट मैच वॉज प्लेड बिटवीन पीवी सिंधु and Akane Yamaguchi of Japan, where PV Sindhu, despite having won the first game, went on to lose the next two to Akane Yamaguchi. In the next match, Unnati Huda of India lost to Tomoka Miyazaki. The third match was played between Trisa Jolly and Gayatri Gopichand of India, who beat Yuki Fukushima and Mayu Matsumoto of Japan. Yet, this victory was not enough for India to be able to defeat Japan in totality. Because the last match that was played between Tanvi Sharma of India and Nozomi Okuhara of Japan, we saw Tanvi Sharma losing to her Japanese opponent. We now move on towards the men's team event in badminton quarterfinals. The first match in this was played between Lakshya Sen of India, who beat Japan's Kodai Naraoka in a very thrilling 66-minute encounter to give India a 1-0 lead in the men's team quarterfinal tie. This victory thereby set the momentum and pace for the next shuttlers who were to represent India in the second match. Because in that match also we saw India's Chirag Shetty and Satwik Ranki Reddy up against Japan's Hoki Takuro and Kobayashi, whereby they pulled out a brilliant victory from the hands of Japan by defeating them in straight games to win the match 2-0 in favor of India.
0: It was a mixed bag overall in racket sports. In table tennis, the men's team lost to South Korea, while the women defeated Thailand and made it to the quarterfinals. However, their North Korea came in their way.
2: Let's now talk about table tennis. Indian women's table tennis team beat Thailand 3-2 in a hard-fought match at the Asian Games 2026, advancing to the quarterfinals. In a dramatic turnaround in table tennis, India's Srija Akula conceded the final three games after taking a 2-0 lead early on. In the second game, India's Yashaswini Ghorpade win against Suthasini Savitabu to keep India's hopes alive. The Achitale went down in another five-setter, losing to Jinnepa Savitabut of Thailand. In the fourth game, Yashaswini Ghorpade defeated Oravan Paranang, and finally, Srija Kula won a crucial match against Suthasini, help India secure the overall victory. The final

0: ஸ்கோர் லைன் ரெட் 3-2 இன் ஃபேவர் ஆஃப் இந்தியா.
1: टीटी और बैडमिंटन के अलावा एक और रैकेट स्पोर्ट एशियन गेम्स का हिस्सा है जहां पर भारत की पदक की उम्मीदें हैं. हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टेनिस की.
0: आद्य तिवारी सफर्ड 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा जिलगर इन द वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी मैच. लेटर इन द डे इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जैमीना टुक ऑन अरेन हुसैन इन मेन्स सिंगल्स ग्रुप डी क्लैश वेयर इंडिया बीट पाकिस्तान. जैमीना सिंपली वॉज द बेटर प्लेयर अगेंस्ट पाकिस्तान्स अरेन हुसैन. द इंडियन टुक द मैच अवे फ्रॉम हिम कम्प्लीटली फिनिशिंग द मैच विद अ स्कोर लाइन ऑफ 4-2, 4-0, 4-2, 4-0 देयर बाय कम्प्लीटली आउट प्लेइंग हिज अपोनेंट.
1: इसके बाद रुख करते हैं फेंसिंग का.
2: फेंसिंग यानी तलवारबाजी में इंडिया के लिए दिन मिला जुला रहा, लेकिन वुमेन्स ईपी में तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 16 तक पहुंचकर सबसे लंबा सफर तय किया. चारों इंडियन फेंसर्स ने पहले अपने रिस्पेक्टिव पूल बाउट्स के जरिए नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 से आगे का मुकाबला हुआ. सबसे पहले वुमेन्स ईपी तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 32 में थाईलैंड की नाटपपात सांगनियो को 15-10 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई. वहां उनका सामना हुआ साउथ कोरिया की रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सोंग सेरा से. तनिक्षा ने बड़ी चुनौती दी, लेकिन 9-15 से हार कर उनका कैंपेन समाप्त हुआ. यह भी खास है कि तनिक्षा इस साल सीनियर वुमेन्स ईपी में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीत चुकी हैं. इसी कैटेगरी में मितवा चौधरी का मुकाबला चाइना की योंग जिंग वेन से बेहद करीबी रहा. मितवा ने तीनों पीरियड्स में फाइट जारी रखी, लेकिन अंत में सिर्फ एक पॉइंट के अंतर से 14-15 से हार गई. अब अगर चले मेंस फॉइल स्पर्धा की तरफ, हिमांश सिंह और सचिन दोनों ने पूल स्टेज में 3 जीत और 2 हार के साथ राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी. राउंड ऑफ 32 में हिमांश ने कजाकिस्तान के गलीम नूरुमोव के खिलाफ पहले पीरियड में 6-5 की बढ़त बनाई, लेकिन नूरुमोव ने वापसी करते हुए मुकाबला 15-9 से जीत लिया. वहीं सचिन को कजाकिस्तान के टिमोफी ने भी 15-9 से हराया. इस तरह मेंस फॉइल में दोनों इंडियन फेंसर्स का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 32 में हुआ समाप्त.
1: जहां इन खेलों में मिला जुला रिजल्ट रहा, तो वहीं स्विमिंग और शूटिंग में पदक आते आते रह गया. और बता रहे हैं अभिनव.
3: Aryan Nehra was in action for India in the swimming competition in the men's 1500 meter freestyle final B. Aryan tried his best, strived hard, but unfortunately finished fourth and came so close in that men's competition. The Indian men's 4x100 meter medley relay team comprised of Utkarsh Patil, Danush Suresh, Benedict Beniston and Akash Mane. The men's team finished 7th and then qualified for the final, and there were huge expectations that they would show some outstanding performances in the pool. However, when it came to the final, the competition was fierce. It was really tough. While the Indian swimmers strived hard, they unfortunately finished last and 8th in the medley relay final. It was really tough competition for India and it was a great experience for them, while China once again took the gold in the swimming pool.
1: फिर शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल हासिल कर लेने वाली एला वलेन वलारीवन के पास मौका था मिक्स्ड टीम में भी पार्थ माने के साथ पदक पर निशाना साधने का, पर वो चौथे पायदान पर रही.
3: द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ एला वलेन वलारीवन एंड पार्थ माने फिनिश 4th इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम फाइनल एट द एशियन गेम्स 2026 in Aichi Nagoya, Japan. In the qualification round, Valarivan and Parth Mane shot a strong combined score of 634.6, finishing second to qualify for the medal round. However, in the medal round, the duo scored 376.3 in the final, maintaining the fourth position from the opening series and missed out on a podium finish. And as usual, as we have seen in the Asian Games, China won the gold medal with a world record score in the event. The qualification round score of the Indian athletes was the best Asian Games record. Moving on to the men's and women's skeet competition. Talking about the men's team first, after 100 shots, the Indian men saw contrasting fortunes as the individual qualification rounds progressed. A.S. Naruka is currently in second place with a total of 96 points so far, putting himself in prime position to qualify for the individual finals. Miraj Ahmed Khan is positioned further down the order at 23rd place with a total of 91 points. While Bhavdev Singh Gill is ranked 35th following a tough run of series with a total of 86. Now when we talk about the skeet men's team finals, India stood at the end of day 2 in the 5th position with a total of 273 points. Meanwhile, in the women's skeet standings, the Indian women remain in contention for

0: the finals, led by a strong push from Raisa Dhillon. Raisa moved up significantly to fifth place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhaliwal was positioned just outside the top tier at 9th place with a total of 89 points, while Maheshwari Chauhan currently sits at 16th place with 85 points. The Indian women's team are in 3rd place with 266 points. A reminder that there are 125 shots in this event, and just 25 shots tomorrow will decide the team standing for both India men's and women's.
1: कुछ और खेल भी आज चर्चा का केंद्र रहे, उसके लिए चलते हैं विदुषी की तरफ।
2: आइए अन्य खेलों में सबसे पहले शुरू करते हैं सेपेक टेक रॉ में, जहां इंडिया के लिए आज का मुकाबला टफ रहा। मेंस टीम रीगू के ग्रुप बी में इंडिया को मलेशिया के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चलते हैं इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में इंडिया के प्रदर्शन के ऊपर, जहां इवेंटिंग टीम कैंपेन आज 7th पोजीशन के साथ खत्म हुआ है। टीम ड्रेसेज में इंडिया ने 112.40 पेनल्टी पॉइंट्स के साथ 7th प्लेस हासिल करा है। टीम जंपिंग में भी इंडिया का कैंपेन एलिमिनेशन के साथ समाप्त हुआ, और इस तरह टीम इवेंट में इंडिया मेडल कंटेंशन से बाहर रहा, लेकिन आशीष लिमाय का 6th प्लेस फिनिश आज इंडियन इक्वेस्ट्रियन कंटिंजेंट के लिए सबसे अहम प्रदर्शन रहा। ई स्पोर्ट्स के ई फुटबॉल में इंडिया का कैंपेन भी खत्म हो गया, जिनमें साहू और दानियाल शकील पटेल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-0 ड्रॉ खेला, जबकि मंगोलिया के खिलाफ स्केड्यूल्ड मैच में ओपोनेंट के डीएनएस रहने से इंडिया को वॉकओवर मिला। पॉइंट्स बराबर होने के बावजूद टाई ब्रेक में उज्बेकिस्तान आगे निकल गया और इंडिया नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गया। मेडल टैली की बात करें तो इंडिया इस समय 8th पोजीशन पर है, जहां उसके खाते में कुल 7 मेडल्स हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। मेडल टैली में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले स्थान पर है, जापान दूसरे एंड कोरिया तीसरे स्थान पर है।
1: कल एक बार फिर इसी समय हम पूरे दिन का हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। एडिटर स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं दर्पण टिकिया।